फूल बगिया में भावरे आए और अकेले चमेली घबराए। मुबारक बेगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना फ्रॉम द मूवी जिंदगी और ख्वाब कंपोज बाय मैस्ट्रो दत्ताराम वाटकर। तो हमारे प्रिय प्रिय सुनने वालों, सभी नगमे फिल्म जिंदगी और ख्वाब जो रिलीज किया गया था 1966 में मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को जो देखा जाए एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1966 में, अकेली मत जइयो। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है महान अभिनेत्री ब्यूटीफुल मीना कुमारी जी के साथ और मीनू मुमताज जी के साथ। म्यूजिक डायरेक्टर, संगीतकारों का संगीतकार महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट मदन मोहन जी, और अल्फाजे है बयानों का मैस्ट्रो मजरू सुल्तानपुरी जी के हाथ में। तो उसी फिल्म में से अब आप नगमे सुनेंगे। एक ब्यूटीफुल डुएट है जो मैं रख चुका हूँ प्लेयर में और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। महान संगीतकार जोड़ी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द ग्रेट सुरोका देवी, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और सुरोका बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन। ये तो कहो कौन हो तुम,

अकेली मत जाइयो 1963 ये तो कहो कौन हो तुम। लता जी और रफी साहब जी की आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन और अल्फाजे थे सुल्तानपुरी जी का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है, हम पहुंच चुके हैं फिल्म अकेली मत जइयो तक जो रिलीज किया गया था 1963। अगला बयान थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग गसंग दोर क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी, कंपोज बाय माएस्ट्रो मदनपुरी, लायरिक्स मजरू सुल्तानपुरी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ uit de film अकेली मत जाइयो 1963 composed by maestro मदन मोहन क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में. यारो कुछ शेष हो जाए हमारे शेष के चाहने वालों के लिए ना. अर्ज किया है यारो कि हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, उजाले में भी शोर मचाया करते थे. उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे. ये भी होता है जिंदगी में यारो. दारू और सिगरेट पीने वाले इंसान कभी मतलबी नहीं होता, दारू और सिगरेट पीने वाला इंसान कभी मतलबी नहीं होता. जिसे अपनी खुद की जान, जिसे अपनी खुद की जान की चिंता नहीं, वो भला मतलबी कैसे. या कितनी कठोर विधाम बना है खुदरत की, कितनी कठोर विधाम बना है खुदरत की. फूलों का राजा गुलाब, फूलों का राजा गुलाब कांटों में रहता है, और जीवन का निर्माता यानी जीवन का निर्माता जातों और पाटों में रहता है.

सब जमाने में रह गए, धोखा फरेब सब जमाने में रह गए, हम प्यार का हक अदा करने में रह गए, जो साथ चले थे वो आगे निकल गए, हम रास्ते के पत्थर हटाने में रह गए। ये भी होता है यारो जिंदगी में। एक मजेदार शेर है ये, बच्चों को कुछ यहाँ पर फरखड़े किया जाता है ना, आजमा जाता है। कहा जाता है कि इंग्लिश में सू के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे दीरतैन में जो जाते हैं तो कहते हैं एक बंदर को देखकर, ओ वाओ लुक अ मंकी इज स्लीपिंग, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। और वही बच्चे एक हिंदी मीडियम स्कूल के जो दीरतैन में जाते हैं तो बंदर को देख के बोलते हैं, देख तेरा बाप सो रहा है, पत्थर मार साले को। ये भी मजेदार। दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, प्यार की रस्मों के ये जमाने वाला क्या जाने, होती है कितनी तकलीफ कब्र के नीचे, होती है कितनी तकलीफ कब्र के नीचे, ये ऊपर से फूल चढ़ाने वाले क्या जाने। तो ये था कुछ शेर्स है हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। आगे मैं कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ी पुराना सॉन्ग है, एडू फिल्म अकेली मत जइयो, मदन मोहन जी के साँच पर एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल सॉन्ग पिक्चराइज गया है मीना कुमारी जी के ऊपर।

Kelly met J.O. Beautiful song, title song from the movie Kelly met J.O. 1963. Maestro Manan Mohindike Saj per Sunaya Aap Sabiko Bharat Ratna Queen of Melody Lata Mangeshkar Ji. और अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूं प्लेयर में आप श्रोताओं के सेवा में, और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी और पद्मश्री सुरों का बादशाह रफी साहब जी. रास्ते में दो अनजाने ऐसे मिले, आई द फिल्म अकेली मत जइयो 1963. Beautiful song, special, aapke naam.

A masterpiece of composing by maestro Madan Mohan Ji, Majnu Sultan के लिखा हुआ अति सुंदर बयान सुनाया आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी और आशा भोसले जी और जो फिल्म अकेली मत जइयो 1963। देखा जाए तो एक अति सुंदर गजल आप सुनेंगे, ब्यूटीफुल ओल्ड गजल सॉन्ग कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन एड फिल्म अकेली मत जइयो। जरा लफ्जों पे ध्यान दीजिए, सा यानी मजरू सुल्तानपुरी जी ने क्या अल्फाजे इस्तेमाल किया है इस गाने में, गजल में, तो जरा मिल के सुनते हैं ना। वो जो मिलते थे कभी, क्या अल्फाजे है, दिल को छू लेने वाला नगमा।

A beautiful gazelle composed by maestro Madan Mohan uit de film Akeli met Jayo. Suruka Devi, Lata Ji ke beautiful awaaz mein. Ye hawa ye mastana mausam. Ek ati sundar jugalbandi duet aap sunenge. रवि साहब जी और लता जी के आवाज में कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी जी ने ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आपके नाम

ये मस्ताना मौसम ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अकेले मत जाइयो 1963 क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाजों में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना।

तुम्हारे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार 1972 कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हैप्पी नास्तावते लीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम, आउट इज गोल्ड गीत और गजल, और एक महान संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर के कुछ नगमे लेकर आया हूँ, पुराने जमाने के डगड़ेत जयदेव जी के बनाए हुए कुछ धुने आप सुनेंगे, और उसके बाद सिर्फ नगमे चलेंगे जिन मूवीज में ये महान अभिनेता डगड़ेत एक्टर श्री राजेंद्र कुमार जी ने, जिसे हम लोग जुबली कुमार के नाम से भी जानते थे, जिनमें ये महान अभिनेता ने काम किया है। तो बीच में कुछ ज्ञान के बातें भी है, हमेशा की तरह कुछ शायरी भी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना जहां पर भी हो, जी साल में हो। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को याद करते हैं, और स्वीकार कीजिए हम लोगों का मोहब्बत से भरा हुआ सलाम और प्यार दुलार के साथ रवि साहब जी।

गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज से।

हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं ये महान संगीतकार जयदेव जी के कुछ बनाए हुए धुने के तरफ। और जैसे हम लोगों को मालूम होना चाहिए यारों कि ये जबरदस्त संगीतकार जयदेव जी जितना धुने बनाए हैं तकरीबन 95% से ज़्यादा इनके गाने सुपरहिट साबित हुए। तकरीबन 30 फिल्मों में अपना संगीत दिया है, हिंदी फिल्मों में और कुछ अलग भाषा के फिल्मों में भी अपना संगीत दिया है। तो मिलकर सुनते हैं जबरदस्त सॉन्ग जो ये महान संगीतकार ने बनाया था लता जी के लिए, जो लोगों को बेहद पसंद आया था। फ्रॉम द मूवी प्रेम पर्वत, क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में, और ज्ञान निसार अख्तार यानी जान निसार अख्तार का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान, वन ऑफ माय फेवरेट लता जी का ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम एंजॉय।

masterpiece of composing by the great music director maestro Jay Dale from the movie Prem Parbat 1973. Agla bayan ki taraf badhte hain ek ati sundar bayan hai evergreen song sunane ko ja rahe hain aap sabhi ko ek bar phir Lata Mangeshkar ji ke मधुर आवाज में एड फिल्म हम दोनों और इस बार साहिल ध्यानवी जी का लिखा हुआ ये दिल को छू लेने वाला नगमा कि अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम ऑल्सो कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव.

Dat Mangesh Kardjike Madhuravaz me uit de movie Hum Dono. Sahir Ludhianvi aur Jaydev ka ye combination to aap sun rahe hai. Agla bayan ki taraf badhte hai, ek aur zabardast song hai jo kafi lokpriy bane the us zamane mein. 1961 ka ye banaya hua dhun uit de film Hum Dono. Aur guzarish hai mujhse aap sabhi se ki lafzon pe aap zarur dhyan de, क्योंकि महान लेखक शाहिर जी ने ये नगमा को इतने खूबी से लिखा है. क्या बात है, जिंदगी बदल देता है लोगों का अगर ये नगमा आप ध्यान से सुने. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वन ऑफ माय फेवरेट रफी साहब जी का, मिलके सुनते हैं.

का साथ निभाता चला गया। एक फिल्म हम दोनों 1961 रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में और जयदेव जी का साज, क्या कॉम्बिनेशन था। साउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। पुराने जमाने uit de eind 40, 50, 60 tot 70 kan je महान संगीतकार श्री जयदेव जी के कुछ बनाए हुए धुनें आप सुन रहे हैं। अगला बयान also from the movie हम दोनों 1961 एक जबरदस्त सॉन्ग है। महान गायक सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। A masterpiece of composing by maestro जयदेव जी।

0: जहां में ऐसा कौन है, इस बार क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में, ऑल्सो फ्रॉम द मूवी हम दोनों, साहिर लुधियानवी और मैस्त्रो जयदेव जी के कॉम्बिनेशन अल्फाजे और साज मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।
1: के साथ कारवां मूवी।

जहां में ऐसा कौन है, एक फिल्म हम दोनों क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय मास्टरो साहिर लुधियानवी, यानी अल्फाज़े थे साहिर जी का और संगीत साज था मास्टरो जयदेव जी का। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है और इस बार लाते हैं डॉक्टर के जी येसुदास जी को प्रोग्राम में। एट दर 1977 फ्रॉम द मूवी आलाप कंपोज एंड अरेंज्ड बाय मास्टरो जयदेव जी।

0: जानना चाहता हूँ कि चांद को यह अधिकार किसने दिया कि वो अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़कर चला जाए।
1: अरे ये क्या मजाक है, सुनो ना।
0: ये मजाक नहीं योर ऑनर, ये एक दुखी आत्मा की पुकार है। कानून, अगर आपकी तरह औरत होता तो मेरी मौत किला श्रीमती प्रेमिका के दिल का दर्द समझ लेता। कोई लड़की जिंदगी भर एक सखी के साथ बात करके नहीं रह सकती। मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि अदालत प्रेमिका की पूरी दुहाई सुनने के बाद

0: ज्यादती देखिए ऑनर, एक तो वो बिचारी प्रेमिका को अकेला छोड़कर अपना आता पता बताए बिना चला जा रहा है और ये भी बताने को तैयार नहीं है कि वो कब वापस आएगा। लो जेंटलमैन ऑफ द जूरी भी आ गए, जेंटलमैन ऑफ द जूरी आप भी सोचिए और ये भूल कर सोचिए कि आप मर्द।
1: सोचिए सोचिए भाई, सोचने समझने का काम अपनी भाभी भी छोड़।
0: आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, जूरी जो कि वकील इतना भी नहीं जानती कि अदालत न किसी की बीवी होती है न भाभी, लेकिन
1: अदालत क्योंकि स्त्रीलिंग इसलिए वो जूरी बिना भी देविका के दिल का हाल समझ सकती है।

beautiful song composed by maestro Jaydev Ji, jinka special aap sun rahe hai. Uit de film Alaap 1977. Mahan gayak Dr. K.G. Yesudas Ji ke beautiful awaaz mein. Ik hoor het is onder bayan, also from the movie Hum Dono. Ye नगमा इतना चला है हमारे भारत देश में और वर्ल्ड वाइड के लोग अभी तक सुनते हैं और ये गाना एवरग्रीन है एडो फिल्म नतीलक हम दोनों कंपोज बाय मास्टर जयदेव और अल्फाजे है शाहिर जी के आवाज सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी. लता जी का कहना है कि ऐसा कलाकार बार बार जन्म नहीं लेते, अभी ना जाओ छोड़कर. कॉम्पोज बाय, जी हाँ, ये नगमा भी ये महान संगीतकार ने बनाया है, द ग्रेट मैस्त्रो जयदेव जी ने.

छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। फ्रॉम द मूवी हम दोनों 1960 क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी और सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। महान संगीतकार जयदेव के कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर धुन अल्फाजे थे महान लेखक शाहिर लुधियानवी जी का। तो हमारे विप्री श्रोताओं यही तक था आज का ये स्पेशल महान संगीतकार द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर माएस्ट्रो जयदेव जी का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन और देश विदेश का समाचार सुनेंगे, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो कहीं।

0: वीकेंड।
1: हाँ, सबसे बड़ा रुपया, रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल मांग किया गया है।

मेरा बाल अब इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कहते हैं 1 5 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज

दोनों प्यार की हो गई जीत फिल्म जादू से। यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मेरे दोस्त। जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे, क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे, क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शाह।

यहाँ से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी के आवाज़ में।

सुरैया जी के आवास में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

शमशाद बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में, ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आए ना मेरा दोस्त? और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी हम तन्हा है। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

शमशाद बेगम मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन 1959 की पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दिस गोल्स। इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है भी सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बार है आपके लिए फिल्म आर पार से निकलती फिर फैफ तक के शमशाद बेगम जी की आवाज़ में

title song film aar paar 1954 ke picturize kiya film Shamshad Begum ji ki awaaz mein sune. Star cast isme hai Shama, Gurudutt, Shashikala aur Kumkum ji. और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ से हम बता दें आपको कि जिंदगी जिंदगी ना किसी से नाराज होकर जियो, जिंदगी में ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर, खुश होकर जियो।

0: 1946 की ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है मेरे दोस्त। म्यूजिक डायरेक्टर इसका है नौशाद जी, डायरेक्टर है महमूद खान और गाने वाला है सुरेंद्र और नूर जहान।
1: दुनिया मेरी जवान है, आवाज दे कहाँ है।
0: यहाँ से जो आप सुन रहे हैं उस जमाने के लोग, तो उनका याद जो है वो ताज़ा हो गए होंगे, तो ये भी आपको बधाइयाँ हैं कि पुरानी यादें, जो अच्छे अच्छे यादें उसे ताज़ा हम कर ले तो कितना अच्छा होगा, रौनक हो जाता है चेहरा।

एक बार फिर आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है आज के प्रोग्राम में, इस पल के प्रोग्राम में। खामोशी से मतलब नहीं, खामोशी से मतलब नहीं बातों से है मेरे दोस्त। दिन तो गुजर ही जाएगा, मसला रातों का है। पल ये समय आपको बहुत सारे बधाइयां दे रहे हैं।

यही तो बात है, कल हो ना हो आज तो है, ये पल तो है, इसे में इसी के एक अच्छा यादगार बना लो। मौका इसी पल में है। कल हो ना हो टाइटल सॉन्ग से हमने सुने सोनू निगम जी के आवाज में, रोज सुन सकते हैं इतना मधुर आवाज में, और इसमें कितना

स्पेशल स्पेशल सॉन्ग्स आपके लिए चुनकर और लाई हूँ आज के वक्त में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से हम सब जुड़े हैं, स्पेशल स्पेशल आप ही के लिए है।

ये 2 पल की जिंदगी है मेरे दोस्त, इसे जीने के लिए सिर्फ दो ही उसूल बना लो। हाँ, सिर्फ दो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जिंदगी के हम सफर में हो तो बात पे यकीन तो नहीं था, पर तुम आए तो यकीन हुआ। और सफर जो है मोहब्बत ही से भर गया है।

फिल्म दिल चाहता से सुने हम शेखर महादेवन शान और के की आवाज में कि दिल जो भी कहे परवा नहीं, हम तो अपना राह सीधे चल रहे हैं। इन लेफन हु द्रोक यह ओक है मैन लिफ मेंस भाइयों बहनों इन लेफन हु द्रोक यह ओक है नेम द तैत ओम मैच दीर बारन त प्रातन वा दू य अंदर्स में द तैत अस दर नीत मेर सेम। अच्छा समय अच्छा गीत आपके लिए हमारे अच्छे अच्छे लोग जो सुन रहे हैं फाओ हिंदुस्तानी रेडियो। दुनिया के जिस गली में आप जहां भी जैसे भी हो आपका इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड वाइड सुन सकते हो फाओ हिंदुस्तानी रेडियो।

के घुंघरू टूट गए इसी वक्त। वही से मैं यहाँ सोच कर और सोचते रहते कि घुंघरू कैसे ही टूट गए पता नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। विचार ही आपकी पहचान है मेरे दोस्त, विचार ही आपके पहचान है।

फिल्म वार से निकाल दिया है जय जय शिव शंकर। सीटी भी बजा दी है। लेर तफर्तरावन द हेल वेरल्ड ट्वेफल्ड।

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूं जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले।

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहाँ मिले है। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए मित्रों। और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोला था है। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करियो, उसे लुकू सहंगा दो दू नंगाइयो। तो ऐसे मुर्गियाँ भी, ऐसे बकरियाँ भी, सभी लोग को पीड़ा होती है मित्रों। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो और ना सिर्फ बोलते रहो, हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला। तरवेल यूना एस्तमंग दो सबके देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों के लिए। मतलब आप भी दूसरों के लिए जिए ना, अपना भलाई करिए, दूसरों के भी भलाई करिए। हम दूसरे के काहे भलाई करिए, पहले वापन करिए मित्रों, ठीक है, करते रहो, जैसे जिए चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों, जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे। यो फादों, और
अच्छे विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे।

मित्रों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। क्या बना रहे? खोने का डर। मित्रों और भगवान कहते हैं, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, अनात्रोवी, मगर मित्रों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यानि मतलब जान ले तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा मित्रों। मगर हम तो कोशिश नहीं करते हैं जीवन के मतलब समझने के लिए, सोचते हैं खाओ पियो मस्त रहो, मिली स्वीति, पैसा है, सब कुछ है, ये बात नहीं है दोस्त। बात ऐसे नहीं है, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, जैसे आप और हम करते हैं। अरे बप्पा मर जाइए तो का करब, मैया रे मैया है। तो जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। फर्क सिर्फ यही होता है मित्रों कि हम जान नहीं पाए हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ रह ली हम पिछले जन्म में, यही तोरिया हम लोग ना जान पाएला, तभी तो दुख हुए है मित्रों। मगर भगवान फिर भी कहते हैं ना कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छाई तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है मित्रों। मगर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमके ना सोचत है, भगवान दूर हो गए हमसे। ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बात नहीं है। मित्रों, इस भजन को सुनकर आप अपने जीवन को शायद

मित्रों, कब मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए। आप पूरे भजन को सुनना। धरती पर दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा, जाति पार्टी, सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं, अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर। क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना कि आप क्या है, बल्कि ये इसे तय होता है कि आप मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रख

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच्चे किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू तो प्रॉब्लम, बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है। हाँ, वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान करना, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने ये वाला द्वार है। मांगो नरक में जाए तो रोज झगड़ा करो ना, क्रोध करते रहो, दशीफायुआ बोलो मित्रों, क्रोध करने से, ध्यान करना, क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। कई बार आप अपने ही नुकसान कर बैठते हो और सोचते हो कि हम का कर बैठली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं मित्रों। दूसरों को दोष देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट हा एक्सैक्ट, क्यों कहे के हम ऐसे बाटी काने के नित खवून से जैसे नॉर्मल रहल जाए प्यार प्रेम से, क्योंकि कल हम भी आप भी तो मरेंगे, तो वारों दी प्रॉब्लम हम ना समझ पाए हैं कि प्रॉब्लम हुआ काहे के मित्रों, काहे के है।

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, मुइती करें, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। कोई आपको कुछ बोले, चुप रहो, वो खुद समझ जाएगा कि वो बेकार को बक रहे हैं। तो चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा मीने हो फरकीफें, तब मरो लेके अगले जन्म में कहाँ जइयो, का करियो पता ना है, ये भगवान जाने। तो माफ कर दो, कहाँ हो जाएगी तुम्हारा कुछ, थोड़ा लाश हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तुम में कामियां भले ही हजारों हों, गलतियां भले ही हजारों हों आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर यानी अच्छा रखते हो। जितना सुनिए, जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे मित्रों। जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, पिसलवा इधर उधर फेंक देगा, कोई देखेगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं, खदेलत है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे, प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कर्म फिर भी हमके मिला था। सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे, हैं? नहीं समझ पाओगे मित्रों। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं, आपके बगल वाले होंगे तो छोड़ो, आप नहीं तो आप सत्य की राह पर चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिश्योर फाइ तुकोम्स ऑफ यू फॉर्म द लीफ दैट बेन यव, और ना कोई और। सत्य से मित्रों ध्यान करना, हम का बोलत हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी, फ्रॉड, लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे। और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे? रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो, हैं? उसमें क्या बात है मित्रों? तो गलत काम मत करिए। नगो दूल आवलोसानी अंदर से हैप्पी हम प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम अपन जीवन आपके हाथ में सौंप दे ली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, और ना बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की काहे बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लीला उलाव चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना हम क्या बोलते हैं, किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान हैम ऑफ दनहार, यू लाओ खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उसे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहां पहुंच लो है? आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है, ऊ जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो क्या हम बोलत है। मित्रों, और संबंध बड़ी बातें सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाओ, तू धनवान है तुमको बड़का बात बिहान गिर जाइयो, है रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपके नहीं किसी और के बात बोलत है। मित्रों, और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, कानिका लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हैं उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोइयो तो कहाँ रोज के फूल मिले हैं, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता मत करो। और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, भगवान बोलत हैं कि हमको समर्पित कर दो सब जो करत बाटे आप। इस मार्ग को अपना कर मित्रों तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बोलत है, हम नहीं बोलत है। तो अच्छा काम करो फिर भगवान के प्राप्त करो, और बुरा काम करो तो फिर राक्षस बनो ना, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे, और का चाहिए आपको है, इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको। मित्रों, हम तो कोशिश करते हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे का होगा। मित्रों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदे भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी है, कितने मेहनती है, कितना मेहनत करे बाटे तू।

मित्रों, इस भजन के द्वारा मैंने आपसे बताया कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एको बड़का होल है जो इंतजार करते है, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेथ है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबेक्यू कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं मैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोल ली, खोपड़ी में आवे बोल देवत हैं तो बाद में सुनत हैं, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं। भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई छल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

0: ने दियो ठोको रणथावा उसको ठोको ही ठोको।
1: I will not give you that मौको। अभी तो कुछ दिनों में मेहंदी संगीत एंड रोको।

0: यार ये बानी और प्रीत का आमना सामना ना हो जाए यार।
1: अरे लंदन है लंदन यार, दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
2: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?

द टाइटल भी आप सुन रहे थे, है जवानी तो इश्क होना है। इसी फिल्म से कुछ और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, चुनरी चुनरी।

ये जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश की है आ जाना चुले मेरी चुनरी सनम। पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दी रानी।

पति पत्नी और वो इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं रूप दे रानी। भूत बंगला है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे ओ सुंदरी।

फ्रॉम द मूवी भूत बंगला से हमने पेश किए हैं ओ सुंदरी। स्टेबिन बेन और जुनिता गांधी की आवाज में आप सुनेंगे तेरा हो जाओ। फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना।

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो आज का प्रोग्राम 12 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। आज मंगलवार है, फिर अगस्त हो चुका है 2026 में हम सब है। जहाँ तक आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा ढेर सारा प्यार पहुँचे, मोहब्बत पहुँचे, पैगाम पहुँचे। सुबह हो चुका है, हर एक जो घर से अपना नौकरी पे जाता है बचा के संभल के जाना। ये फाहम हिंदुस्तानी रेडियो है दोस्तों, और जहाँ पे दुख है हर एक के दुख में हम शामिल है, जहाँ पे सुख है हर सुख में हम सब शामिल है। पूरा टीम फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के पूरा टीम है, पूरा मेंबर से जो आप लोग के साथ है। आज मैं कुछ ऐसे ऐसे गाने को सुनाऊंगा जो आपको पसंद है। मैंने कहा था हर दिल से यह नाता है, हर दिल से रिश्ता है, और सॉन्ग्स चलेंगे जो आप चाहते हैं, आपके मन वाली पसंद मन पसंद गाने को हम चलाएंगे। आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें, ऐप द्वारा ऐप से हम सब कुछ बातें कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम है, कुछ भजन चलेगी और कुछ गाने हैं जो मैंने चुन कर रख चुका हूँ, प्रोग्राम को बनाकर आपके कानों तक हम पहुँचाऊँगा। तो लीजिए दोस्तों हम चलते हैं, कुछ ऐसे भजन है, मैं मुकेश का भजन रखता हूँ, हम सब मिलके सुनेंगे। जो भी अपन पूजा कर रहे हैं उसे भगवान इतना शक्ति दे, हर एक काम उसका पूरा हो जाए, और जहाँ दुख है भगवान उसे सहन शक्ति दे अपना दुख को सहने के लिए। तब तक के लिए हम चलाते हैं इंसान हंसे या रोए।

जी हाँ दोस्तों, कहानी तो ऊपर वाला ने लिख के हम लोग के भेजा है और जैसे कहानी लिखा है वैसे चलेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते आगे। पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की एक बहुत ही अच्छी गाना है, जैसा सुबह है मंगा का प्रोग्राम है।

जी हाँ दोस्तों, सुबह का प्रोग्राम है, कुछ भजन की तरफ से चल रहा है, जैसे भजन जैसा है। ये गीत भी बहुत बढ़िया है सुबह में सुनने के लिए, और हर एक को शुभ सुबह हो, ये पूरा टीम की तरफ से है। चलो हम ले चलते हैं मुकेश की जी भजन, पितुमात सकाय स्वामी।

यह दोस्तों पितुमात स्वामी शका अभी आप सुनते मुकेश की आवाज से दोस्तों, चलो तुमने चलते पद्मश्री मोहम्मद रफी की तरफ।

दोस्तों, बिन मांगे सभी कुछ मिलते ही, इसलिए कहता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है।

के हृदय श्री राम बसे। सच बात है, हर एक के दिल में भगवान ने जगह बना रखा है। चाहे अल्लाह हो या भगवान हो या क्रिश्चियन हो, सभी के दिल में भगवान बसता है। इसलिए कहा है मुकेश ने भी आप लोग को सुनाया है दोस्तों, क्या धन में सुनाया है, सुबह का प्रोग्राम है मंगलवार, लोग अपना पूजा करते हैं और हर एक पूजा करने वाले के लिए मैं ये पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी को आवाज़ में हम आप लोग के पेश करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, भगवान का घर है। अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री मोहम्मद रवि की आवाज में, हम आपको ले चलते हैं भजन मुकेश।

कहते हैं प्रभु आपकी याद में मैं अपने आप को भूल गया। क्या बात है, क्या अच्छी बात है कि आपकी याद में मैं खुद को भूल गया।

मुझे अपनी शरण में ले लो राम, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अभी आप सुने थे। और क्या सुबह का प्रोग्राम है, अच्छे अच्छे भजन है, ये भजन का रूप में और अच्छी अच्छी भजन है। चलो हमें चलते एक बार फिर से मुकेश की आवाज़।

नमस्कार दोस्तों, मुकेश की आवाज़ से भी आप सुन रहे थे। चलो दोस्तों, हम ले चलते हैं फिर से एक बार पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आप लोग को सुनाते हैं। मंगलवार है, सुबह का प्रोग्राम है और आपके घर तक पहुंचाते हैं एक ऐसा भजन के रूप में है दोस्तों।

0: दोस्तों, सुख के सब साथी दुख में कोई नहीं, ऐसा होता है इस दुनिया में। सुख में सभी कोई है, दुख में आगे पीछे घूमिए तो कोई ना दिखाना, ऐसा बात है। हर एक जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है ज़रूर। ठीक है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, आज का प्रोग्राम जो है ये भजन है। अभी हम चलेंगे कुछ न्यूज़ से कुछ रिक्लामों की तरफ, उसके बाद फिर से हम कुछ भजन चलाएंगे आधे घंटा, उसके बाद हम चलाएंगे आज दो या तीन फिल्म के गाने आप लोग को सुनाऊंगा, जैसे कि रोती कपड़ा मकान और फिल्म आईना है। ये सब फिल्म के गाने हम आप लोग को सुनाने वाले हैं आज, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इन फिल्मों के गाने को मांग किया है। हम हर के लिए ये गाने को ज़रूर यूज़ करेंगे और आपके तक पहुंचाएंगे। मंगलवार का प्रोग्राम है, जैसे मैंने वचन दे दिया है, काफ़ी लोग है, शांता कोहबीर है, काफ़ी लोग हैं सुनीता है जो मेरा प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहे हैं, वो सब इस गाने को मांग क्या है मूवी बोले पूरा फिल्म के गाना मुझे सुनना है। तो हम चलाएंगे अभी न्यूज़ और बयान, उसके बाद हम चलेंगे कुछ भजने, एक दो भजने और आधे घंटे तक, उसके बाद हम चलाएंगे कुछ ओल्ड इज गोल्ड फिल्म के गाने हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736523747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet de wakalet ka kaam karta hai, jabhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रिक्लामा और न्यूज। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं आगे। हम बताना भी चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आज चलेंगे, आज है मंगलवार, आज हम प्रोग्राम चलाएंगे। जो भी फाहौन को सुनते हैं, हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, और उन सब सुनने वालों के लिए आज हम कुछ गाने चलाएंगे जो लोग ने मांग किया है। काफ़ी लोग है, इतना ढेर नाम तो बहुत ज़्यादा नाम है सबके नाम ले रखा, लेकिन काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, उन सब पसंद करने वाले के लिए मैं कुछ गाने को रख चुका हूँ। अभी एक चौ दो तीन भजन और चलेंगे, उसके बाद हम चेंज करेंगे प्रोग्राम को। आप सुनते रहे ना, हमारा साथ देना। आप है तो हम है, हम है तो आप है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का प्रोग्राम है, जैसे आप सब जानते हैं कि मेरा सवाल था, एक किलो खौत और हेबी बा के एक किलो रुई वच, या एक किलो पिसान कौन और हेबी बा। शुक्रवार के हर एक फरमाइश मैं पूरा करूँगा। जो भी गाने मांगते हैं, जो सही जवाब देगा उसका हक बनते ही इस एक गाने मांगने के लिए। आज मैं चलाऊंगा आप सब के लिए, जो फहोन हिंदुस्तानी रेडियो पे चून है, उन सब सुनने वालों के लिए मैं ये प्रोग्राम को चलाऊंगा। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। सुनते रहना, काफ़ी फर्रासेंगे आपके लिए, बस आप सुनते रहना।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गुलशन कुमार और हरिहरन। चलो हम आपको ले चलते ही हरिओम शरण की तरफ, दुर्गा मैया के दुर्गा माता का एक भजन दोस्तों।

जय जय माँ, जय जय माँ देवी माता की भजन था हरिओम शरण की आवाज़। एक बार फिर से चलते हैं हरिओम शरण की तरफ।

प्राणों में पागल प्यार बसाकर चला गया। हरि ओम शरण की आवाज अभी आप सुन रहे थे दोस्तों। एक बार हम फिर चलते हैं हरि ओम शरण की तरफ। ऐसा प्यार बहा दे मैया।

ऐसा प्यार बहा दे मैया हरिओम शरण के वास। चलो आप लोग के लिए चलते हैं जगजीत सिंह के तरफ। एक देखा जाए तो एक माता रानी के भक्ति गाना है, भजन है, और हम सुनेंगे। सुबह का प्रोग्राम है दोस्तों, अभी 10 बजे।

के बाद हम आप लोग के जरूर गाना सुनाएंगे और देखा जाए कौन कौन सही जवाब को दिया भी मैं बात करूंगा। ऐप द्वारा बात होगी और गाना भी होगी। प्रोग्राम के नाम है सवाल जवाब। सवाल जवाब प्रोग्राम होगी दोस्तों भी 10 बजे के बाद।

जी हाँ दोस्तों, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ हर जगदीत सिंह की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। घड़ी की तरफ देखा जाए दोस्तों तो 5:30 हो चुका है। 10 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम रहेगा, भजन प्रोग्राम 10 बजे तक रहेगी। उसके बाद हम आपसे ज़रूर मिलेंगे सवाल जवाब में।

जी हाँ दोस्तों, मन मेला और तन को धोए। अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज। हम आपको ले चलते हैं आशा भोसले की आवाज में। एक भजन आप लोग के सुनाने वाले हूँ। आशा भोसले अब तो नहीं है दुनिया में, लेकिन उसका आवाज अभी दुनिया में है। वो जी रहा है हमारा बीच, आशा भोसले।

बादशाह भोसले की आवाज अभी आप सुने थे के अंदाज में इस भजन को गाया है। सुबह का प्रोग्राम कौतवतीन हो चुका है, चलो हम एक बार फिर से आपको ले चलते हैं हरिओम शरण की आवाज़।

जी हाँ जी हाँ, भगवान पार करो। ठीक है, भी आप सो रहे थे हरिओम शरण के वास। दोस्तों एक आखिरी भजन और चलेंगे। गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, बढ़िया आवाज है, बढ़िया भजन है। इसी भजन से हम भजन प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सवाल और जवाब।

जी हाँ, वो भी रुति कपड़ा और मकान का ये टाइटल सॉन्ग से जो मुकेश और लता की आवाज थी। दोस्तों हर एक जो प्रोग्राम को सुना है, पसंद किया है, सवाल पे जवाब दिया, हर एक के लिए ये गीत मैंने सुनाया है। और हम चलते हैं फिल्म, जैसे वादा किया, फिल्म अनीता नेकंदिन जैसल सीफंदर की, जिसमें मनोज कुमार और शादना काम किया है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल इसमें इसका म्यूजिक जो दिया है वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है। चलो हम सुनते हैं कैसे करो प्रेम की मैं बात, ये भी माना है सुनीता नंदा ने इस गाने को माना है। और हर एक के लिए मैं इस गाने को बजाना आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा आज का प्रोग्राम है, हर एक जो प्रोग्राम को सुना है और सही जवाब को दिया है, हर एक के लिए फोन के जितने लोग सुनते हैं हर एक के लिए आज मैं रेडियो पे इस गाने आप लोग के नाम करते हैं, क्योंकि सवाल जवाब है प्रोग्राम का नाम।

नबाबा नबाबा पिछवाड़े बुढ़ा खासा फिल्म अनिता निकतिन जेफलन सस्त की यह गाना है दोस्तों। वादा के मुताबिक हम अपना काम को कर रहे हैं। हम आप लोग के लिए चलते ही एक बार फिर से रोती कपड़ों कान और देखा जाए लता मंगेशकर मुकेश और इस गाने को गाया है देखा जाए ठीक से तो ठीक है नरेंद्रा चंचल जानी बाबू कवाल लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ है। इसके जो म्यूजिक है जो बजाया हुआ है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और जिस कलम से सिहाई से लिखा गया है जिस हाथ से लिखा गया है वो फरमा मालिक है। मनोज कुमार जीनत अमन शाशि कपूर मौसी मिचकर जी अमिताभ बच्चन और प्राण इस गाने इस फिल्म में काम किया है।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा।

विच पैसे लेकर पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे अब

जी हाँ दोस्तों, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। सच्ची बात है, दुनिया भर में महंगाई तो मार दी यार। यार दुनिया में सब चीज महंगा हो चुका है और कहते हैं महंगाई मार गई। इस प्रोग्राम को आप लोग अच्छी तरह से सुनना कि आज का प्रोग्राम जो है, आज का प्रोग्राम है सवाल और जवाब। मंगलवार के हम हर मंगलवार का हर एक सवाल के हम गाना नहीं घुमाएंगे, आप लोग गाने मांग सकते हैं। काफ़ी लोग गाने को मांग किया है, हम फ्री दाख के उस फरमाइश को पूरा करेंगे। लेकिन आज स्पेशल प्रोग्राम है, हर एक जो प्रोग्राम को सुनते हैं और हमारे साथ देते हैं, फाहुन के साथ देते हैं, उन सब सुनने वालों के लिए आज स्पेशल प्रोग्राम है हमारे तरफ से और हमारा रेडियो की तरफ से। द एफगिंग लव द लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से आप सब चुने, हमारा पूरा मेंबर, हमारा पूरा टीम की तरफ से आप सब के लिए आज स्पेशल प्रोग्राम है। एल्कदेसदा के स्पेशल प्रोग्राम फॉर योरली लाइव स्टार जो हमारा साथ देते हैं और तुम सब के लिए आज ये गाना है। एक कौन मुझे लिखा है कि आज मैं मांगता हूँ, ठीक है फ्रेदा के हम आपका भोजपुरी जरूर सुनाएंगे, लेकिन आज प्रोग्राम को सुनते रहिए। स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम सवाल और जवाब आप सब के लिए। टाइम देखा जाए बेना हलफ एलफ हो चुका है और जहाँ तक आवाज़ पहुँचे हमारा प्यार मोहब्बत दुलार भी पहुँचे, तब तक के लिए हम आप लोग के लिए चलते फिल्म अनिता नहीं कर दिन जैसन जैफन तक के। आज मेरा वादा था 2-3 मूवी आज मैं आपके लिए चलाऊंगा, उनके गाने हम आपके लिए चलाएंगे। चलो हम आप लोग ले चलते हैं फिल्म अनिता

Goedemorgen dosters, samen met die Sawaria movie Anita 1967 ये गीत है. चलो फिर चले चलते रोतिका पर मकान के एक हाय हाय ये मजबूरी द क्वीन लता मंगेशकर की आवाज़ दोस्तों हम सुनेंगे.

हाय हाय ये मजबूरी ऋतिक प्रेम मकान के निकाला हुआ गाना है। लता मंगेशकर की आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम आपको ले चलते हैं अनीता।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मूवी अनीता लेखन 1963 की। हम आपको ले चलते हैं फिर से एक बार ऋतिक परा और मकान पंडित जी तेरे मरने के बाद।

जी हाँ दोस्तों, पंडित जी जी मेरे मरने के बाद मूवी रोटी कपड़ा और मकान, और हम चलते हैं आगे। देखा जाए, हम आप लोग के फिर ले जाते हैं फिल्म अनीता, मुकेश की आवाज दोस्तों, गोरे गोरे चांद से मुख पर।

जी हाँ दोस्तों, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें, मूवी अनीता निगंती जी फिल्म जस्त की। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही फिर से एक बार रोटी कपड़ा और मकान और नहीं बस और नहीं।

0: और नहीं बस।
1: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम सवाल और जवाब, आज मंगलवार है, देखा जाए 5/11 हो चुका है। मैं ये जरूरी समझता हूँ बताने के लिए कि आज जितने लोग प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहा है, फहन के साथ दे रहा है, यहाँ से नए मेक अलमेर, ब्रीदा, जर्मनी, स्पाइन, फोर्सकोटन, देनाक्सा, रोटरडाम, अम्स्टरडाम, ब्रीदा, जहाँ जहाँ से लोग सुनते हैं प्रोग्राम को, इन सब के लिए ये गाने जो मैं दो फिल्में के आपको सुना रहा हूँ आपके नाम है। दोस्तों हम आपके लिए इस गाने को चलाते हैं, तार जा रहा है, काफ़ी ऐप आ रहा है और हर एक ने सही जवाब को दिया है कि सोना एक किलो और एक किलो सुकरू इज सेल्फ द ब्लेफ सेल्फ द एक किलो बा सब बढ़िया आमतौर थे। और एक दो था जो कहते हैं सोना और है भी नहीं हो सकता है, एक किलो सोना और एक किलो शुक्र इस ब्लाइफ सेल्फ द। ओके दोस्तों, हर एक के नाम मैंने प्रोग्राम को चलाया है, अब हम चलेंगे न्यूज और रिक्लामों को। यूं गया यूं चला,
2: एडवोकेट कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahun.
6: Digitale radio. Fahunfm.nl.
7: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veel minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahun Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070-365-22-47.
1: Ja, dostom, je hebt het nieuws en reclame. ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे प्रोग्राम। जैसे मैंने कहा था, मैं मूवी क्रांति का भी कुछ गाने आप लोग के सुनाऊंगा और आप सब चुन है द एफ अगेन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से आप सब चुन है और जो दिनाक शहर से अपना प्रोग्राम को बनाकर सजा करके आप तक पहुंचाते हैं, जहां पे सरसराहत हवा चल रहा है, हम लोग के लव बोथ यहां पे लगा है जिसमें खाना पक रहा है, अभी हम लोग के खाना वहां पे है। लव बोथ लोग कटिया लगाते हैं, स्नूक बार्स पकड़ते हैं और पकड़ते हैं, क्रीफ अभी पाते हैं, आप भी यहाँ कटिया लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवनाग शहर से हमारा प्रोग्राम हो रहा है जहां सरसराहट हवा चल रहा है, इसलिए मैं आप लोग के लिए चलता हूं मूवी क्रांति की है और देखा जाए। जी हाँ, क्रांति क्रांति हम आप लोग को सुनाते हैं, अभी हम बात करते हैं।

0: प्यार कर ले।
1: जी दोस्तों, मूवी क्रांति का निकाला हुआ गाना है जिसमें नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज अभी आप सुन रहे थे। लाइरिक से संतोष आनंद, जिस कलम से चलाया गया हाथ और स्याही वो संतोष आनंद है। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मनोज कुमार, हेमा मालिनी। देखा जाए काफी लोग इस फिल्म में काम किया है, दिलीप कुमार भी काफी लोग है जो इस फिल्म में काम किया है, और इंग्लैंड और इंडिया का जो लड़ाई थे ये मूवी बना है, इसलिए वो इस मूवी को वो लोग बनाए हैं, फिल्म क्रांति। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ गलत हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम फिर से एक बार लगाते हैं जो गाना भी चल रहा था इस गाने के से पहले।

जी दोस्तों, मूवी क्रांति आवाज नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम एक बार फिर से ले चलते हैं मूवी क्रांति की तरफ और आप सुनेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम ऐसा ही प्रोग्राम है। हर एक जो मेरा प्रोग्राम को सुनते हैं, फोन रेडियो को सुनते हैं, हमारा सारे कोलेगा को सुनते हैं रेडियो पे, उन सब के लिए हम आज कुछ स्पेशल प्रोग्राम को बनाया है। तीन मूवी थे जिस मूवी के गाने हम आप लोग के सुना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते एक बार फिर से मूवी क्रांति। आपके बरस तुझे धरती की रानी महेंद्र कपूर की आवाज़ है, और ये भी लिखा गया है संतोष अनंत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक है।

जी हाँ दोस्तों, अब के बरस तुझे धरती की रानी, महेंद्र कपूर की आवाज़ दोस्तों, क्या क्या गाना गा रहे हैं। महेंद्र कपूर हमारा बड़ा फैन है यार, हमारा सबसे बड़ा फैन महेंद्र कपूर है यार। और क्या आवाज़ है, क्या गाने को गाया है, दिल खुश हो गया है सुनकर। हम सोचते हैं हर एक जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, हर एक दिल खुश हो गया हो महेंद्र कपूर की आवाज़ सुनकर। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे। हम ले चलते हैं फिर से क्रांति नीकंति इनन तख्त के, और देखा जाए दिल वाले मेरा चना है चना, आप जानते ना चना के गाना। एक बार फिर से क्रांति को देखिए, इसलिए मैं ये तीन फिल्म के गाना को आप लोग को सुनाए हैं क्योंकि आप लोग एक बार इस फिल्म को फिर देखिए, काफ़ी अच्छे फिल्म है और मतलब बहुत बहुत विशाल मतलब है फिल्म के। और हम आज भी देखेंगे फिल्म क्रांति को, हम ज़रूर देखेंगे। कल मैं ऋतिक अपरा मकान देखूँगा, कल दो फिल्म देखूँगा और फिल्म अनीता। चलो महेंद्र कपूर की आवाज, लता मंगेशकर, मन्ना दे, नितिन मुकेश और शैलेंद्र सिंह हम आपको सुनाते हैं।

काम किया है। भारत लड़ते लड़ते आज भी भारत अपना देश के लिए बहुत लड़ा है, आज उसका देश बहुत अच्छा चलता है। और ऐसे बात है, गोरा जात बहुत दुख दिया वहाँ पे, जिंदे लोग को दफना दिया गया है। ये गाना जो गाया गया है एक वारे थे, एक सच्ची बात है। ठीक है दोस्तों, हम आखिरी गाना चलाते हैं मूवी क्रांति के, उसके बाद हम कुछ और आप लोग सुनाएंगे। देखा जाए मंदा देई, शैलेंद्र सिंह, नीतू मुकेश, महेंद्र कपूर और लता की आवाज़ हम सुनाएंगे। लाइरिक्स है संतोष आनंद की, लाइरिक्स है दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, म्यूजिक है और मूवी 1981 है क्रांति।

0: जा दोस्तों, ये यहाँ तक था मूवी क्रांति के गाना। हम आपको ले चलते हैं मूवी कर्मा, जिसमें दिलीप कुमार, नूतन मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति ने गानों को गाया है। दिलीप कुमार नूतन ने इसमें काम किया है और देखा जाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक है और आनंद बख्शी का लिरिक्स है। दोस्तों क्या ये भी ऐसे एक गाना है, एक गीत है जो काफी देश भारत के लिए गाया गया है, अपना देश में इस गाने को गाया गया। काफी गुंडा वहां पे भी रहता है ना, उस गुंडे के लिए इस गाने को गाया गया है। अगर आप ये मूवी को देखेगा तो हम सब समझ जाएंगे।
1: कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने।
1: अरे बरसों से तो कहता आया आया।

जी हाँ प्यारे दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल दिया है जहाँ भी देंगे मूवी कर्मा। ये भी एक बहुत ही अच्छा फिल्म है, अच्छा मूवी है। दिलीप कुमार नूतन ने काम किया है, नजरुद्दीन शाह है, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अनुपम खेर। ये अच्छा मूवी है इंडिया जो मूवी बनाया है। हर एक मूवी में कुछ मतलब है, कौनो बात है। चलो दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते एक बार फिर से मूवी मजदूर नेखंतीन त्रियन तख्त के, जिसमें दिलीप कुमार ने काम किया है। और देखा जाए महेंद्र कपूर की आवाज़ है, म्यूजिक एरदी पेरमन हसन कमल का, ये लाइरिक्स जो है हाथ कलम जो चलाया गया है। और हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना है।

जी हाँ दोस्तों, हम मेहनत से इस दुनिया को अभी आप सुनते हैं मेहना कपूर की आवाज। चलो हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं मूवी करना दे दे दारू। चलो सुनते हैं भाई दे दे दारू, वो चला है ना।

जब सब आप सुन रहे थे दे दारू बड़े से हमें काम, ये दे दारू आप सुन रहे थे मूवी कर्मा, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नजीरुद्दीन शाह, किशोर कुमार की आवाज़, मैना कपूर, मनहर। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, हम सोचते हैं एक आखिरी गाना हम चलाएंगे, उसके बाद न्यूज़ और कुछ बयान भी रहेगा, और उसके बाद हम चलाएंगे गाने को, उसके बाद हमारा प्रोग्राम बहुत विदाई लेंगे दोस्तों। आज के हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, हिस्से का प्रोग्राम खत्म हो गया है, और ये एक आखिरी गाना हम चलाएंगे, आखिरी गीत चलेंगे, और सवाल जवाब हमारा प्रोग्राम बन चुका है, सवाल और जवाब फरीदा को भी होगी। तब तक के लिए हम चलते हैं एक आखिरी गाना, उसके बाद हम जरूर मिलेंगे आपसे।

जी दोस्तों, हर एक को हम कहते हैं जो मेरा प्रोग्राम को सुना है, सही जवाब को दिया है। अब ये आ रहा हूँ उनके लिए, सही सही जवाब को दिया है। मेरा सवाल था, एक किलो सोना या एक किलो सुकुरु, और ये भी है। तीन लोग थे जो गलत सवाल दिया, और हर एक सोना है और शुक्र है। सेल्फ द खबेख्त, एन किलो बलाई सेल्फ द।

0: जी हाँ, सुन लो, यहाँ तक था एक आखिरी गाना और हमारा तुम्हारा साथ यही तक था। हम ये कहते हैं हम एक बार शुक्रवार के फिर रहेंगे। फ्रेदा के हर एक गाने मांग सकता है ऐप द्वारा। मेरा तार का नंबर है 9 0 3 8 0 8 3 3 2। हम आप लोग से कहते हैं बाय बाय स्वाई स्वाई। और एक सवाल करके जाते हैं जो आप लोग मुझे ऐप कर सकता है। सवाल है, एक आंख है तो भी अंधा है, क्या है? मुझे एक आंख है तो भी मैं अंधा हूं, ये क्या है? ये आप इस सवाल पे मुझे हल जरूर देना। अगर सही है तो आप शुक्रवार को एक गाने को मांग सकते हैं। आंख है, एक आंख है तो भी अंधा है, क्या है? यहां से हमारा कोलीखा जो है जोनी नंबर वन प्रोग्राम को लेगा। उसके बाद हमारा हमारा रहीम मफरो रहीम बख्श रहेगा और शाम का हेरहाल होगा न्यूज और हर रिखलाम। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जहां तक ये आवाज पहुंचाए सभी को हमारा राम राम नमस्कार अदाए बरसो। और फिर मिलेंगे शुक्रवार के। सवाल मत भूल जाना, मेरे पास एक आंख है तो भी मैं अंधा हूं, क्या है? यहां से हम न्यूज रखते हैं और रिक्लाम। उसके बाद हमारा माइस्ट्रो जोनी नंबर वन,
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट फाहों हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमॉर्गन, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen, om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zit er vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

Kala na jane ooit je niet, kala na jane jaat. Soort is iemand aan DJ Hamko, apni aansirbaad. Tamam radio van hun kisunne walon ko, hamara ram ram namaskar, pyar bhari naam sat sri akaal. Johnny number one hai hamara naam. और देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों अभी आप लोग सुबह से लेकर अभी करीब 12 बजे तक और एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है, वो है हमारा कोली खा साथी दीरबार कोली खा, वो है अनिल सरजू और उसकी बीबी साहिबा और वो है राबिया भी साधिया है। अभी 2 बजे 1 बजे बीबी साहिबा रहीम बस का प्रोग्राम आप लोग जरूर सुनते रहना, यहां से हम 1 बजे तक देश विदेश के समाचार को सुनाएंगे। शाम को 6 बजे इस प्रोग्राम को हम हर हाल करेंगे, याद रखना।

और दोस्तों हम तुरंत बढ़ जाते हैं अपना समाचार को लेकर। और समाचार क्या क्या होगा दोस्तों, आप लोग को तो पता है, जॉनी पूरा दुनिया को शेयर कराएंगे और करा कर वापस हम आ जाएंगे। अपना सूरीनाम और नीदरलैंड का भी कुछ खबर आप लोग को हम जरूर आज बताएंगे दोस्तों। 15 बरिस के 15 यारख लड़का भैया जेके अब्बे बाप माई स्कूल पठावे है, सभ्यता पठा बतावे है, सिखावे कि दुनिया क्या है। और 15 बरिस के लड़का सूरीनाम देश में भैया, और गैला एगो क्लीनिंग साख जेके नाम बा कैली फैशन लतूर वेख में भाई, और गैला हुआ सले पर भैया, सले पर चोरी करे और कपड़ा चोरी करो, ये लड़का के भविष्य का होगा भाई। 15 यारख के अनकिंत मुतिक्षक आंखलग और ओकर भविष्य का होई। रात के ई गैल है भैया, ऊपर से क्वालिफी जेर दे दिवस्टाल करी से भैया, ना सोचे दुकान में गए और चीज ले के जे भीम चल गए, ना भैया प्रोफेशनल दिवस्टाल करी से और गैल है कपड़ा और स्लेपर चोरी करे भाई। हाँ, और बोले है ऐ खनार जो रहा साख के सी, हाँ बोले शनिचर के 1 तारीख ऑगस्टस के 10 बजे बोले हम अपन दुकान मोई से बंद कर ली है। सोमवार के सवेरे बोले व्यर्थ है दौर अनुभवा कर फान फास्ट फूड रेस्टोरान खबेल मैन मई दे डीलिंग दैट एर वॉज इन ब्रोकन। वहाँ पे एगो वक्त रहा फास्ट फूड रेस्टोरान के सवेरे सवेरे के बैल कर बोल तो दुकान तुरान है और अंदर नेमर भैया दाद सही देर फन विंकल ओपन स्टोन और बोले हे फरमूद दाद दाद ओफर द ओम हेनिंग से इन क्लोमन एंड फॉर फॉल्कन्स फिया द सही देर द विंकल इज बिनन खद्रोंगन। जब कंट्रोल भैले भैया तो बोले टी शर्ट गैल है और मेरक अंडर आर्मोर सेना के नॉर्थ फेस एम्बे रकम कौर तो भ्रुक सब चोरी हुई गए सिपाही गए और फॉर स्किल इन खुदरे पकड़ान है भैया ऑनर सुकरी से बोले हैगा तय जैसे पुलिस और वेयर द फॉर स्किल इन खुदरे बस लाख रोमन एखनार हर कैंड दे से लातर अस एक दोन फन जैन जाग भैया। और 15 बरिस के एक येरेमी एम पकड़ी से ओके और गए हैगा बोले ई लौंडा एगो लौंडा रहा करिया करिया ई बाइक पे लतूर वेख में रही तुन है दूर मन वेट आंखस प्रूक मैंने फरसूक ओम लिफ्ट फॉल्कस हेम हाथ दे समान अखरोत जिम्बोतास एन स्वार्थ प्लास्टिक सक में क्लीडिंग स्टोकन बेसिक। बोले द फरदख्त फरक्लार द फेर द से सामन ऑफ द ई बाइक फरत्रोकन मार बे हेड सीन फन द पुलिसी द टसन ऑफ द ग्रॉन खोइदन एन वेगरेंडन करिया नाइकर 15 बजे के लुंडा के 3 घोसले पर अनफन आले से के पकड़ ली से हमारे जनता। तो आज हमारा सूरीनाम के भविष्य देख ले भैया, 15 यारख यों और शुरू कैसे अभये से दुकान तूरे के चोरी करे के। तो ये अपन तुकोम्स में भैया इससे कर एगो बहुत बड़का का बोले हैगा दिफ रहेगा अने का बोले हैगा माफिया रहे भैया वहाँ जो छोटे पसे ये सब चीज करे लगिए तब बड़का हो तो के और एरफारिंग हो जाएगा। तरी रखेरिंग के ओर हम जाए भैया, सीमोन और गैगरी रेसलान के रखेरिंग की ओर हम जाए है नानी। तो बातचीत ई हो रहा है भैया, बड़ी गर्मी गर्म है सूरीनाम देश में और अभी आप बताएंगे हम बताएंगे आपको कि सेड्रिक सिमसन सैमसन का बोली से जनता बहुत नाराज है प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन के। बोले 1 बरिस हुई गए है बोले अबे देशवा में इक्को फर बेहतरिंग ना आए ले यश ओही के आदमी लोन कपड़ी लोन अब कलाख करे है कि बोले है और खराब हो गए भैया संतोखी के रखेरिंग से बोले और ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो यहाँ जेनिफर सिमोन जो हम लोग के
president Suriname ke au bole hega bole okar cabinet jo nahi minister in har cabinet bole u mangega re shuffling bhaiya mange ramien ke nikare to ek barish hoige ta ab tu jaye nikare Suriname ke go kanun hai bhaiya je ek barish to minister baate tab tu jin to ke nikar di ta tu jindagi bhar paisa paiye bahut uske rakhering mein bhaiya 50 60 go ek barish ke baad mein nikarat raha उसे आपके जिंदगी भर पैसा मिलेगा वो एगो स्मेरख अन हेल फिश ऐसे बोल ले भैया अन पॉलिटिक हैगा कि एक बरिस तो के हम ले ला तो अब ओकर बाद में फिर एक मिला धरबे तो फिर एक मिला के धरबे जो ने सबके जिंदगी भर तुसी का फौस पइए खरातस में और जिंदगी भर पइया पैसा पइए ते एकर बारे में संतोखी ब्रेंसवाई के रखेरे मात्रा ई वेतवा निकारे मालूम ना वेतवा निकार पाए रहा कि ना निकार पाए रहा और यहाँ बतावे है का मांगे है रेशफल करे वेलफेयर से दत्त मिनिस्टर से इनवार एंड मेयर सोमुतन खबरें स्टार्ट सोफर सिरिनाम फॉर द टेजेस रखेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मांडा आन कि ओकर रखेरे इस ओवरनाम फॉर के यार इस कब्लीकन दत्त है हास अल मिनिस्टर हिल फिल कपोट वास एंड दिस खरीपारेस मुस वर्दन लेकिन यह बताई गई दोस्तों बोले यह हैव ऑल्टेन मेंशन इन एक्स्ट्रा स्केप ये अबो फॉर ऑफसेटन इस बात सिमोंस बतावे है मना बतावे है का जो रिशफल करिए मिनिस्टर वर के निकरी तो पैसों आ पाई कि ना पाई ओकर बारे में ना लिखी से यह भैया स्टार्स ओ बना दिया कर दादे रिशफल इन द एन कान इमन अंडर द कान सी फ्रॉम द मिनिस्टर दैट वर्क बेटर टू डू मार द अंडर कान कॉस्ट दैट हैड लैंड ओ फील हेल फॉर दैट दैट से बेटर फिर ऑन दैट वर नोडिक मिनिस्टर टू ऑन steunen, bolle volgens Simon zorg er gebrek van decentralisatie in het land. Komende jaar is het jaar waar ik graag wat meer ga werken aan de herstructuring van de overheidssystemen. We willen werken naar een raamwet. We willen werken. Toen ik zei, ik ben eens met kan, dan ga ik mevrouw Simon. Of hij zei, president moet werken. Nu is de vraag, John Adam Jenke, de zoveel minister, gaan ze wel de geld krijgen? Salaris de hele leven? Of niet, want als die mensen, het moet zo zijn, als je je werk niet doet, moet je ontslag krijgen en dan moet je ook geen cent krijgen. Ga maar solliciteren voor een ander werk. Zo is de leven. En het moet niet anders zijn. Wij zijn in Suriname niet zo ontwikkeld. Artemange en Miloke, ik wil luxe leven dat we op deze manier 1 jaar minister blijven en daarna ontslag geven of een reshuffling. En dan word je de hele leven namelijk verzorgd door de belasting geld van onze bevolking. तो ये बात है हमारे सुरीनाम की जनता। अब देखो यहाँ पे बतावे है रखेरिंग बोले सित ए रे पराची फासे बोले अबे हमने ठोंक ठाक करीला रखेरिंग वहां में एक बड़ी जोई गएगा रखेरिंग जिमोन के और रिसलांद के एनपीएस के और बोले हम लोग अबे रे परेर करीला भैया तो के चाहे काम करे तो के चाहे रे परेर करे के प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन बोले हैगा बोले हम लोग के खाते को बहुत दाखिंग हैगा अरे जे तू ले ले दे सो हमें तू जानत रही कौन चीज तू पई है तो बोले 3 तारीख अगस्त के बोली से और बोली से प्रेसिडेंट से पलेस में बोली से स्टाचो बोली से गा बोले एक बरिस बोले स्कट्स से द प्रायोरिटीज फॉर द कमिंग पीरियड सिमोन वो फिंड द रेगिंग सिक मोमेंटल इन रिपरासी फासे बोले हैगा अब ओके हम लोग स्पाना आना लेके रख रहे वहां के बनाएला भैया बोले टूटल फूटल ला तो ये कौन मोदो है भाई तो ये बात है हमारी जनता सुरीनाम की और हॉलैंड की जनता जो हमारा प्रोग्राम को और सुन ले भैया हम जाए तेरी दिल्ली के ओर इंडिया की ओर अब इंडिया में भैया तू जाने हैं वहाँ पे ऑन्टविकलिंग बहुत जबर है भैया जब से नरेंद्र मोदी आयल है और जोगी बाबा आयल है देश के बढ़ंती बहुत ज्यादा है अब बोले दिल्ली में से स्टीफ इन ऑफ इलेक्ट्रिक फूड टेकन इन स्ट्राइक टेकन लुक फॉर फेलिंग जो इतना धुआं हुआ है बोले वो धुआं खातिन बोले सब बंद करी और ज्यादा इलेक्ट्रिक सब कुछ हुआ होगा बोले इन द्रिक विंकल खबी जहां दिल्ली में बा
hoofdstad van India. Aur bole hega, wahan pare, bole hega, vrachtwagens en auto's druk bezig met opladen bij de weinige beschikbare laadstation. Dit beeld symboleert een van de grootste uitdagingen en beloftes van de Delhi's ambitieuze plan om een straatbeeld gratis te vergoeden en beruchte luchtvervuiling aan te pakken. Ik tarik jullie introduceerde Delhi een nieuw beleid dat is gericht in 2027. Bole het jara bole elektrisch gari hua pare chaliga. Aur yahan pe bataye gaye bhaiya bole flexibel en toegankelijk last station hua rahega. Expert benadrukt ki Delhi elektriciteitsnet moet uitgraden en meer moet inzetten op hernieuwbare energie om aan de stijgende vraag te voldoen, mensen. तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता. तो आपको हम अपना प्रोग्राम को और आगे को सुनाएंगे भैया. नीदरलैंड में बहुत जबर झूरा है जितना आदमी के तैन उन है सबके ब्रीफी गए ले खमीन तक के अब पानी तो के ना चाहे तरकारी के सींचे के ओमदाद झूरा बहुत ढेर हो गए है दसवा में. हॉलैंड के बांची थे जितना आदमी के तैन हैगा जने रिक्रियासी तैन है जो तरकारी अरकारी बेचे है उ सब आदमी के अब पानी ना चाहे सींचे के तब सोचो ये पानी ना है तरकारी प्यासे मर जाए भैया. ये हो बात है हमारे जनता. तो ये बात है हमारे दोस्तों. अब देखो जाए अब और क्या हुआ है. बोले वी एस एर बंग फॉर मारवेन. बोले मारवेन में के डड़ा यहाँ लिखल भैया. मारवेन रीबा के मानचित हुए है जो जिंदगी भर से एवन लंग फ्रांस रह गया फ्रांस कुयाना से और मारवेन तो जाने अल्बिना से. बोले हजारन लोग हजारन को इससे एलिफेंस लीफंस अदर बोले जिए है वहाँ पे मछली से जिए भैया हंडल से जिए है काम से जिए है. बोले रिफीर फॉर मेन खमीस कापन दी आन वेद सैदर्स आल जेनरेशन लांग मेट एलकार लीफन. Toch leek de Marwijn de opgelopen periode vooral een rivier van onzekerheid bolle, te zijn geworden. Bolle, tijdens de Kroetu, Stoelmans eiland mee, Abobke voorzitter Ronnie Brunswijk, Barca protocol hega stemkrikken waren mee. Bolle, democratisch mag ieder partij een eigen afweken maken. Bolle, ik er waren mee, Brissen ze, jarenlang is het zijn naam om Frankrijk onderhandel kregen, beter afspraak kreeg gezamenlijk grens 2021 met een protocol bijla onderteken bijla toenmalige regering Brunswijk vicepresident op een vervolgens consultatie met de grensgemeenschappen op een behandeling के बारे में हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता. तो जैसे जैसे समाचार रहेगा आपको हम बताते रहे. अब देखो भैया एगो औरत भाई बड़ी चकल्लस करी से. हाँ औरत भैया सिपाही के ओतो लेके भागे. सरनाम के भैया सरनाम के बात है. और ये बात हुए हैगा भैया लेसुन के रास्ता ओकर नाम बा कनोफ्लो वेख के बात है हमारे जनता. तो एगो रास्ता के नाम है कनोफ्लो. बाकी कनोफ्लो तो सुरीनाम में ना बवा है लेकिन रास्ता के नाम है नानी. तो एक औरत भैया सवेरे सवेरे सिपाही के ओतो चोराले भैया बैठ खमाग. बोले ओतो हुआ जो रहा अब ओके सब खोजे है तो जाए के पाई से कनोफ्लो वेख में भाए. कनोफ्लो वैक में पाई से बकी बस कारक हो तो हुआ ना रहा. सिपाही बोले हैगा बोले फुरते फिर द्री कर एन दे उकर नाम रहा जो लेडिंग फन अखेंट औरत है. बतावे फॉल्क्स द पुलिसी रिपोर्ट क्रीक दे बमांगने पुलिसी फुरते अंडर लेडिंग फन एगो सिपाही के नाम बा अवतार द opdracht assistentes te verlenen nadat het dienstvoertuig van de DNG was weggenomen.
ओ तो वो लेके भाग गया। बहुत सिपाही एक एक खोजी से भैया लेसुन वेख में जाए के पाइसे सिपाही सिर्फ हेर द इंटेंसी इन हर कबीर रोंद मखेंता कनाल वेख एंड द ओमलीगंदे स्वेगन Zij wegen aanvankelijk zonder resultaat. Op het eigen jega. Ter plaatse werd ook de vrouw aangetroffen die het voertuig zou hebben meegenomen. Zij vertoonde volgens de politie verward gedrag, waarna om extra ondersteuning werd gevraagd. Te beloof verward trabeluk een mooie naam mooie kamatra. Bekisie paaik autoliek toe peelbangel he. Bolle omdat de contactsleutel van het dienstvoertuig niet meer aanwezig was, werd besloten de autosleepwagen weg te voeren. Toch ik hier के लिए मैं कहां से लेंगे ये औरतिया ओकर बारे में यहां पर ना बताई से हमारे जनता किसी पाए के गाड़ी लेके सेवन चल गए हैं तो जब मालूम पड़ेगा तो आपको हम जरूर जरूर जरूर जरूर बताएंगे। एक भाई और बहन भैया सब कोई रक्षा बंधन माने के दोनों के हाथ में हटकड़ी लगल है। हाँ भैया के हाथ में दीदिया बांधे हैं रक्षा बंधन। यहाँ भैया और बहनी दोनों के हाथ में सिपाही बानी से हटकड़ी लगाई से भैया हंद बुए लगाई से कारण कि बुई तारीख के भैया ये दोनों जात्रा के फॉल पे ना सांदर ये पे के सबन पकड़ ले से दरक्ष भैया दरक्ष टीम इस के पकड़े रहा पकड़ ले से भैया ये दोनों बोले है स्टोंट नेट naar het buiten te vertrekken. Dus sap kuj hoi gera. Ab ohi tu jane last. Passport wa check karke. Ab tu jaiye bahre. Ab bahre chaliye plane me. Ab bole hega ekar bare me. Sipahi farmut karat ra. Ki dunu verdachten cocaïne bolletjes hadden in geslecht na lollipop. Bolletjes duru lile ra. Skoutu farmut kale ra. Aur dunu के नरकोटिका ब्रिगेड ने पकड़ के ले गए हैं अंडरसुक करी से देखो 52 jarige vermoedelijk cocaïne op een natuurlijke wijze zijn uitgescheiden terwijl de 46 bolletjes heeft uitgescheiden 46 bolletjes op hij wat 52 vermoedelijk cocaïne bolletjes gaan. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man totaal 116 bolletjes zou hebben ingeslikt en de vrouw 91 bij jou. De otra ilile raha bolletjes na Berline bolletjes kokake bolletjes hey mausi tu samaj gai le hum kahan mangila jai hamare janta. तो हम जाए नीदरलैंड में भैया स्वोले की ओर तो स्वोले के जनता भैया एगो हो को बरूप से बन तेकन कर ले रहा बरूप कर ले रहा स्वोले नारायण बकी सखवा सबन हराई के भैया ऊपर एगो इंस्प्राक कि एगो नवा आजद से जिस असील सुकर के खबाव हुआ आएगा तो हुआ के बोनर जो ने स्टाच हाखन स्वाले के होकर बरूप गयला एगो साख में सबन हार के खमीन तब स्टीर में ओवर इन spraak rond de komst van nieuw asielzoekerscentrum in hun wijk. Gemeente heeft volgens het gerecht op, weliswaar op sommige punten onhandig, maar niet onrechtmatig geopereerd. Februari me ego stichting Leefbaar Staatshagen bole ego kort gedenken leren hij kerbare me en bole hij ga op straffen van dwangs om 10.000 euro per dag tjahinga in hoger beroep eiste de stichting dat de gemeente alle voorbereidingen voor de realisatie van het aanzet per direct zou staken bole tjahantra ban kareke op straffen van de dwangs om van 10.000 per dag en dat de gemeente een participatie traject met de omwonenden zou starten. Zwolle vindt vangt sinds 2023 ongeveer 10 zo vluchtelingen op aan de Meeuwenland in de wijk Kamper Poortraan. Locatie bolle 1 februari ke bieden we samen stem de gemeente in met de komst van de nieuwe AZC in Staatshagen. Daar moet volgende jaar ruimte komen voor de maximaal 400 asielzoekers ke hoa sabandariga. To
ये बात है हमारे जनता। हम बोली कुछ आसील शुकर के बारे में बतियाए भैया, जबरदस्त आगे लगल है इना दूसर देश में, हम लोग के देश में भैया नीदरलैंड में भइल है, नॉर्थ लिम्बर्ग्स तो ऑस्ट्रिम में भइल हैगा, नतीर ब्रांत है जहां पे भैया बहुत जबर जंगल में आग लग गए है। हां नतीर ब्रांत है और बताएंगे लुफ्त है कान ब्रांत फर्दर अप्लाइन दैट ब्लूसन ड्यूट नोक सीकर tot woensdag mensen hier liggen en nou bij je. De brand breidt zich verder uit richting de oosten. Oh je maakt het Noord-Limburgse oosten mee. Wat eigenlijk je 100 hectare bij je jarige hee. Oh bolle, dat komt neer op 1 vierkante kilometer. Zo hectare 1 vierkante kilometer ke baantjit hoe we. Burgemeester Jonega uit de Haag, Jonne gemeente Van Rijke, bolle hega 7 jaar door zijn boetawe he. Gelukkig is er nog steeds geen materiale schade in de vorm van objecten of persoonlijk leed, zegt hij. Brandlucht zelf de ruiken in Friesland met zijn makke hoe ze ke Jon Agia he. Friesland met zelf admike utra doelig hawa geil he. Duma ke. Obole de brand brak maandag aan het begin middag. Er is toen een Nederlandse alert verstuurd vanwege de rook. Opbollegen vanuit onder de meer Friesland, Overijssel, Gelderland meer. Melding bij de brandlucht gebaren mee. Toen gebaren we 100 hectare. Agi se janiki hamlukke natuurbrand bhail hai. Aur wo hai Limburg mein. वेनेजुएला के भैया ने सुरीनाम पैकेट पठाई से, हाँ ह्यूमिटेर हिल वेनेजुएला के पठाई से और वो है हम लोग के सुरीनाम पठाई से और फोटो बने एक से एक भैया, पाकी में सब सरनाम के फोटो बनावल है और प्लेन लगे थरल है कि इतना पैकेट हम लोग पठाईला वेनेजुएला में भैया हेल्प खुदरन और बोले द हेल्प अक्सीमा दिल सुरीनाम से अंडरस्टैंडिंग ऑन द बफरिंदलैंड बोले हैगा फरवुस्तंद आरबी जे हुआ भइल है और बोले हजार को फुल फुटसर पैकेट पठाई से और एक पैकेट 10 किलो और बोले हैगा ओमा है 52 ton rijstega, 2 container vallen hem, verscheept, daarna volgt via zeevraag aanvullende zending van 9 ton. Toen ik er baan heb, bij sociale media per admiloon, bari naraji dekhaise, ki hem lukke deske apre hulp kaam hem, en toen Venezuela

Kamba, maar moeten ook andere mensen denken hoe de dingen zijn. Wat op Suriname met die pakket behoedt als pas over he. Dan gaan we ook binnen jij lokker baren mee bolen. Die pakket wat naar patouw. Dus zo, ik 52 jaar ke admi bhaiya sipahi ke mari se badrai kari se bhaiya met de dood. Aur ichi jo bhai ko are ding lage bhai le hamari janta ek 52 yaar ke sipahi police fan centrum shahar ke banchit hai paramari bo ke banchit hai aur bole hai ga turtona lant me bole इंसिडेंट हुआ भैल है जहां पे यो को हामा इंडबीर थे वार पुलिसी अखंड बोले बेशक रहा अफांदल करके को अरेडिंग के बारे में उतरे में बोले फलोफ के बमुई दे फरदाख्त बमुई करी से बोले हर लहालक में द वर्कसम हीरे फन पुलिसी अब बोले ओकर बेटवा फर और साग द फन अरेडिंग सेन खवीज बेटा हुआ जो रहा वही फर और साग कर ले रहा अब बपुआ गैला बमुई करे सिपहियन के कितलोपन काम ना मुई करे है ondanks meerder bevelen om afstand te nemen van de politie, haar werk te laten doen, bleef de man die agressief intimiderende opstellen door zijn gedrag voelde benadeeld aan de aanrijding, zich bedreigd en werd de afhangende handeling van een verkeersongeval ernstig gestoord mensen. Oro is je pahin waan hai, als je kijkt aanrijding bij la, oké jij kijkt zo toe bedreigd kriisega, si pahin loon bhaiya, aur upar se adamia si pahin ke बोले हैं मैंने दूत हैबे बदरेक एन फोकस इन गेसिक्ट हैबन गसलागस को उतन के मरबो करी से सिपाही लोग के भैया चोट लग गए हैं और बोले हैं तब एक पकड़ के और ले आए के बंद करी से uit oefenen van de politie taak. De man werd door de politie aangehouden overgebracht. De up to jou sipahi ke ban kari toke pakadke. Kaida toke na bhaiya arreding kare laat de politie maar hun werk doen. Ondanks Surinaamse politie een hele slechte naam is, zijn er heel veel politieagenten die goed zijn job doen mensen en laat die mensen hun werk ook goed doen. Zo gaat het en het kan niet anders. Abhaiya dekho tamasa. Ego dukaan hai Suriname देश में भैया जहां पे मुर्गी बिका है नास्किप ओकर नाम बा और ये है शहर परमारी बहु के बांचित है चोरन घुसल है दुकान में मौसी और ना गला मुर्गी के टंगड़ी चोरी करे हां ये सब गैला कलई से निकारे और कलई से निकार के भैया आप वही जात रहा बस उतरे में सिपाही पहुंच रे दादा रे मैया दैया लेके कलाइस पलाइस बिक के चोर भागल भैया अब कलाइस वाद निकाल ले रहा दुकानिया में से ओम बोले ले के भगल है मसीपाही भैया दौराई के सब के पकड़ ले से त अपि चोरवन हाथो से गैल लतो से गैल मतलब हाथ से कलाइस छूट गए और लात अब सिपाही के खइए तो ये बात है हमारा सूरीनाम के हमारे जनता दोनों के सिपाही पकड़ के और ले गए है बोले अब चल तू गाना गाओ उमा नांगा मांग गयो और उमा नांगा मांग ना गयो तो मुर्गी के गोश ना पियो खाई के जहल के बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं सुनाते हैं एक गीत आप लोग को हम सुना देते हैं उसके बाद हम तुरंत आ जाएंगे आपके पास हमारे सूरीनाम की हॉलैंड के और जनता आपको कौन गीत हम सुनाई बहुत खूबसूरत है ये गीत

और मेरे दोस्तों, और करो तुम क्या क्या, लेकिन हम आप लोग को अपना प्रोग्राम को और आगे को सुनाएंगे। तो हमारी प्यारे प्यारे जनता, हम जाते हैं अपना और समाचार को। और यहां बताए गए भैया, सूरीनाम देश में बड़ा गर्मी भैया, 40 खराद हो गई है गर्मी। हेत और फिर तक खराद इन सूरीनाम, स्टेफक ऑन वेयर्स बैन ऑफ कॉम्स इन सूरीनाम, जबर पानी बरसी लेकिन बहुत गर्मी है। तो जे सूरीनाम को जाना भैया, आप लोग को मालूम चाहिए कि क्या बात है। ये 3 तारीख अगस्त के बातचीत है। बोले है का माकर में द्रकन वारवेर को फॉलो दो रस तैर के तू नहीं मतलब काउंस ऑफ रीकन एन ऑन वेयर बैन बेनलांत में भैया जबर पानी बरसी लेकिन 40 खराद गर्म है। यहाँ बतावे सवेरे सवेरे खरोतन दिल झूर रही और बोले संझा कैसे बोले सेफ न डर तक तो फिर तक खराद सूरीनाम में टेम्परेचर हैगा और बोले हैगा मिनिमम टेम्परेचर 20 तक रहेगा। तो रात के साथ रात हुई भैया और बताए गए हैगा फॉल्क का बीच फरवाखिंग खल फ्राई वेल डिस्ट्रिक्ट इन कॉन्स ऑफ द ऑनवेज बैन इन परमाणु भी वानी का लेखन टेम्परेचर ओवर दक तुशन 24-32 ग्राद कोरोनी के पलवीनी क्विक ऑफ तो 33 ग्राद में से। तो आप लोग ना डरवाएला बताएला गर्मिया कैसे सब कोई तिरक बोली बाप रे बाप हमें वो हफ्ता उड़े के कैसे रहबे हम बोले कैसे रहबे हमारे को लिखा कल गया है नाम नहीं लेंगे कौन, तो उसको तो पता चल गया होगा कि कैसे है चिजवा। तो ये बात है हमारे जनता, गर्म जो है गर्म जो कितने लोग को अच्छा लगे भैया कितने लोग को, तो बोले हमारा मान के गर्मिया ना में ठंडवा सहाइया है, बोले गर्मुआ ना सहा है हमार बात वही भैया। कारण कि दोस्तों ठंडा जो है तो ठंडा है, तो उससे आप अपने कपड़ा जो है पहर कर अपना देही को गर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे ठंडा यहाँ है, जब बहुत विंटर है भैया तो यानी कि मोटा यास पहरो भीतर में टी शर्ट पहरो फिर तुरई पहरो, और जब और गर्मी है तो टी शर्ट ना पहरो यास ना पहरो तो फिर ऐसे। लेकिन जब गर्म है भैया तो लास्ट जो ना बिना कपड़ा के चलिए तब वो गर्म हुआ लगेगा 40 खरीदवा इसमें से। हम जाए है एक 13 बरिश लड़की की ओर। 13 बरिश के एक लड़की सूरीनाम के भैया लंदन ओके दुई दुई को ले गए है नानी, ना गए लूस एंड मामा पढ़ावे नानी, ले गए ओके पेंशन में भैया। सूरीनाम में वो जाने पर्दा वाला घरवा बड़ा ढेर है, तो खोरदेनवा घीत दिया भीतर में, वो तो लगल नाटक खेला है भीतर कमरा में धना धन खेला है। तो सूरीनाम में ये पेंशनवन चारों बगल है भैया और लिखल है बोले अपार्टमेंट डाल जाइयो। सोचिए हम गली फकलांसी से जाइयो अपार्टमेंट वहाँ हिर कले जहाँ कहाँ देखियो खरदेन है वहाँ ना जाइयो। तो ये 13 बरिश के लड़की के शुक्रवार से ऊपर से स्कूल से एक 17 और 20 बरिस के लंदन एक ले के गए है मुंगो के पेंशन में भैया। वो है ओ सूरीनाम में, तो मुंगो में ले गए भैया फरनोमन वार्ड कि ओकर माई गैल सिपाही में नालिश करी से कि ओकर बिटिया घरे ना आइल है। और बोले तेज से ऑन द सू ब्लैक दैट मेच लातर सेल्फ द स्क्वाम, बोले ओकर माई ओके कॉन्फ्रेंस तेर कर इसकी तू कहाँ रह ले। तो लड़कियां बोले हम दुई गो लंदन के संगे गरी पेंशन में है स्वेरक बनावे नानी। तो बोले द मुदर दे आन खिफ्त और ओ हीरो जाए के दोनों लंदन के सिपाही पकड़ी से और दोनों के पकड़ के बोले है मेंदर या रख रहा है एगो अभी दोनों के पकड़ के लेके अब बंद करी से। तो ये बात है भैया 13 बरिस के लड़की के और स्कूल के लंदन ने ले गए है और पेंशन में भैया मेंडर यारक ना है स्वैरक बनावे स्कूल के भैया दूसर है स्वैरक गैला बनावे। तो ये बात है हमारे यारो हमारे जनता। भैया हम यहां देखिला संदराई के रईस खर्च जो बा बेना 2 किलो कोकेन लेके हबड़ा होत रहा। हाँ
2 kilo. Ik op 34 jaar ke advi sanichar ke baat hai. 2 kilo coca leke jatra bhaiya baitalan. और एक भी दृक्ष तीन पकड़ ले, अरे ये गो का पकड़ ले भैया, 10 गो हबड़ा हो जा है, तो जो पकड़ा वही लिखा है, अब जो ना पकड़ा थोड़ो लिखा है। और इधर ले रहा अपन रईस कॉफर में भाए, रईस कॉफर में ढल ले रहा नेहत ही होंद अख्त देर तक खराम ढल ले 2 kilo। और बोले एक नौकितिका नारकोतिका बिखा दे ले गए और पकड़ के ना तू लग बन करेगा। जब तू ऐसा चीज करिए तो सूरीनाम में दृक्ष वक्त युवा फिर शुरू हुई है भाई। बोले चश वाला अब आप लोग को हम पढ़ के बताए न, और यहाँ पे और कुछ बताए गए हैं कि अब कॉफर बाख में भी लेके और जा है हबड़ा हुए है हमारे जनता, ये बातचीत है। तो दोस्तों चोरी भैले भैया, हाँ खवापंत रूफर्स भैया, एगो माकन फोर्थ रैप्टर, एगो ओतो के नाम बसरी नाम में औ है फोर्थ रैप्टर ओकर नाम बा। हाँ सिरादन एंड फेफ तक 2000 एसआर देही मारिस ओतो वो चोराई से, और 50,000 कहाँ है हमारा है? हरीश मनोरथ मिनिस्टर फॉर जस्टिस पुलिस बोले देसवा रिश्ता कोई गए चोरी ओरी ना होवे। बोले बहुत कमती बले दे रे भैया, दिन दोपहरे हुआ बालकोन में कोई झलवा झूले और ओकर जे कहा बोले हेगा सोना के केती फेती ले के भग जा। अभी यहाँ देखो एगो करिया करिया खरीस फोर्थ रैप्टर रहा और ओकर हाउस कैटिंग 3 अंगूठी और 2 कॉन्टैक्ट ले तरफन अंदर फुटते हैं 2 मोबाइल और 50,000 एसआर दे लेके और लुटेरा लेके पेल भागल भैया। और बोलेगा बना देल दे रीड एंड वेयर रिक्टिंग voertuig is weggereden en is vooralsnog nog onbekend. Op het eigen nieuwe grondje sipahi ik er waren mee. Khoj bin kare hai jor tor se. Ab dekho mile hai ki na. Eerste hulp ke baad bhaiya blijf 24 uur open tijdens uitbreiding en renovatie. Te saban aanzet joon hai academie ziekenhuis. Bole hai ga saban renoveer karega. Maar bole chahe renoveer karega. Ziekenhuis wa wel 24 uur. Bole hai ga bareik bar rahega. To hum boli aap log ko hum batai de. Ki Suriname ki जनता ना घबरियो कुछ रही तो आप लोग ने कर बारे में एक को बुन चिंता करे काम बा आसे तुलो जाई सके चाहे रेनो फांसी हुए है लेकिन आपको वहां पे बहंदली यानी कि मिलेगा। तो ये बात है दोस्तों हमारे यारो प्यारे प्यारे जनता। स्टार न्यूज बतावे भैया बोले कैनेडी वेख में अतवार के भैया जबरदस्त कंट्रोल भइल है। और बोले उतरे में एगो प्रोफेसर जाए के भड़ भड़ भड़ भड़ कौतुक ऊपर चढ़ा दे इसे भाई नहीं को रेमोना कमात्र कि अब सतलक चढ़ा इसे महिया लिखल अब सतलक सिपाही ऊपर चढ़ा दे इसे सिपहिया के स्टॉप टेकन दे इसे प्रोफेसर ना रुकल जाए के सिपाही के पेल दे इसे नानी फर के सांतावे एम परकेट वक्त। बोले हैगा सिपहिया बोले आखिर ऑफ दैट मोमेंट रहा उसने लहज कंट्रोल करत रहा ब्रोफिस के और बोले वेखर कर ले रहा स्टॉप करे के और जाए के को रूपड़े चढ़ा दी से स्नेल है इस मीत अपराध ने तेज कंट्रोल वेर खबर राख्त उग बस्कादक में से है इस ओवर खबराग ना थी पुलिस बिरो। अब देखो ओकर संगे का हुए का ना हुए जैसे पाही तो के रुकाई भैया तो के चाहिए रुक जाए के। तो ये बात है हमारे जनता। आओ देखो सब बोले हैं हमारा सिमोंस गैल है इंग्लैंड। बोले गैल पैसा थोड़ो लेनी करे और एक बारे में गया दिन बोले रे बोले खोल कर थोड़ो गैला कर्जा लेवे वहाँ जब प्रेसिडेंट गोड़ निकारे दे सो ते सब के धुक धुके कपते रहे कि कहीं जाए के हो कर रहे तो मैं कर्जा ना लेवे है। तो सिमोंस या बोले खीर लेनी अफ खसलो उतर बैंक ऑफ अमेरिका
तो इतना आदमी ना विश्वास करे अपन प्रेसिडेंट के। जेनिफर सिमोंस मार के बोले ऑन कैन करे है कि वो लंदन गए ला बोले लीनिंग ही ऑफ कसलूटर बे द बैंक ऑफ अमेरिका volgens staat zo waren de gesprekken uitsluitend bedoeld om een strategische partnerschap op te bouwen in de internationale financiële deskundigen naar Suriname te halen in aanloop naar de verwachte olieinkomsten. Bolle hem kardjana lili hè, or ijse baant hè. Hamare piare janta nieuwe grond kisi paailom bhaiya. Or bolle Melfis Pinaz ghar ghume hè. Or janta se huwa baatchit karega ki tulon konchi mange hè hiya. पे जनता से मांगे कॉन्टैक्ट करे इंस्पेक्टर लोड और हुआ जनता कितना बोले यहाँ पे हंग योंगर दुकान लगे बोले बहुत ढेर है हुआ दुकानियां लगे खड़ा हुई के दारू पिए भैया दारू पिए है और अंड बन फिस फास भी करे जो हम लोग औरत जात जाए दुकानिया में और बोले हैगा ओकर बारे में बोले तू लोग कुछ कर और चोरी चपाटी हमारे देश में इस तपलास पे दोस्तों का हम बोली बोली जो नहीं खतीफ बतिया हम नहीं खतीफ ना बतियाला हम वही बतियाला जैसे तोरिया है ऐसे बतिया है ना हमार नानी ऐसे बतिया है और दूसर बात ना है हमारे जनता। तो ये सब बात है सूरीनाम देश के हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के जनता। एक गीत हम आप लोग को सुनाएंगे उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को धीरे धीरे खत्म करेंगे और वो गीत क्या है आप खुद ही सुनिए।

बस दोस्तों, इसी गीत से एक दो समाचार आपको हम सुनाएंगे, उसके बाद में अपना प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। दस एंड कोर्ट न्यूज मैन से दी ओली सीकम टू वेट। अब देखो भैया, एगो मलाई है, ओकर नाम बा पावी रो रे जो सा नाम से फॉलो कुछ से दीप्स काम और फोड़े स्मे रख बेनन स्टार। भैया बोले गंधा है देसवा, पर हमारी वो गंधा है हुए के पार्लियामेंटारी है। बोले पावी रे जो, बोले जनता के चाहे हुआ पे बहुत शर्म के मारे में डूब मरे के हिंदुस्तानी में सब बोले ना डूब मरे के चाहेगा तो पावारे जो। बोले भैया बोले सलाम के बेनलाल बोले स्मेर रखेगा। उसके बाद में साथ साथ हम चलते हैं हमारी जनता स्लेमी स्टाफ वेर आत्विन तक खबलाइफन प्रात तो में खराब अनमी मुर्गी पोसे है एक बदराइफ है और बहुत नहीं खाते फिताई बतिया रखे रिंग के बारे में ओम द दसवन नामो चले साथ साथ। भैया एगो इन सेफ तक यार के आदमी के लाइक मिलल अफू बाका वख में भाई डाम पे मिलल है। साथ साथ हमारे जनता फ्रांकराइक के अम्बासाडर जो नहीं सूरीनाम बोलेगा फ्रेंस अकॉर्ड के बारे में कहीं खुशप्रेक करे तुल जानो है सेड्रिक सिमोंस जो रहा और वो बोले रहा बोले वै वेले खेन हेन खेन फ्रावन आज प्रेसिडेंट में लेकर बारे में जितना एनडीपी के औरत रहा सूरीनाम में और बदुल करेला दे नाम में सब निकल के डाम पे खड़ा हो गए। बोले है बोले कैसे तू बोल सके के औरत कहना चाहिए प्रेसिडेंट हुए के तो सिमोंस यानी कि सैमसन बोले सेड्रिक सैमसन बोले है बोले एक क्वार्टर के इंटरव्यू जो हम कली बोले पूरा सुन तो लो खाली एक मिनट हुआ वाला सुने बोले हम ना बोले कि औरत के नाम आखे करे के बोले औरत लोन हमारे के क्लाख करेगा कि एगो औरत प्रेसिडेंट आए ले बाकी तब वो कुछ ना कर पावे है। बोले ओकर बारे में बोलली बाटी कि औरत प्रेसिडेंट हैगा चाहे ये है मां वो आए के फ्रंट वोर ले खाई दे नाम में ना देवे। बोले ओकर बारे में बोलली है और एकर बारे में इंग्रिड बाउटर्स जो ने बाउटर्स का औरत बोले हैगा बोले बोलेगा स्क्रू ले लेकर बोले खाली चिल्ला है सैमसन तो सैमसन इंग्रिड के बोले बाउटस के बोले है बोले पहले इंग्रिड बाउटस के चाहेगा जितना नापसंदीदा औरत है उसे माफी मांगे के जोन ओकर आदमी जोन है और फुटल भाषा में बोले भातार जोन ओकर है बाउटस जोन मर गए है बोले ओकर बोले चाहे इंग्रिड के नापसंद के या औरत लोग के चाहेंगे फॉर ऑस्कुलिंग करे के बोले हम नकर फॉर ऑनस्कुलिंग लाद द फ्राउ फन बाउटस इज फॉर फॉर ऑनस्कुलिंग अनबीरे फॉर द नाबस्तांडे जेकर बाउटस आदमी लोग के माढ़ाड़ी से दोस्तों जबरदस्त आगे लगल है और ये हैगा वोनिंग ब्रान अन मोन सो की वेख में सूरीनाम फॉरलोर द ऑफ कोलो पर फिर तक यार होंदे सेस हेक्टर जंगल दोस्तों। तो यहां तक था हमारा देश और विदेश के समाचार जो आप लोग हमारे जॉनी नंबर वन के जरिए सुनाए हैं। नीदरलैंड के आखिरी भैया एगो आदमी मोंटन बाइक चलावत रहा और नीदरलैंड में एगो वॉल्फ देखी भैया और वॉल्फ के देही में एको बार ना रहा भाई है सीखते रहा आपल दोरन के बारे में है तो आप लोग को हम बता देते हैं। तो यहां से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करने का आए हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम है जॉनी नंबर वन। राम राम नमस्कार प्यार भरी नाम सत श्री अकाल।

एक समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे और वो है हमारे साथी गंगा जी के, यानी दोनों राख के उसका एक इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू होगा एक महान पर्सोन है, दीरबार पर्सोन है जो आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि जो हमारा आओवी के बारे में। अभी आप लोग इसके बारे में भैया गंगा से और अच्छा से सुनेंगे।

एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्तान दौंदरदास और खिस्तस को करीबन 11 बजे एक आवी खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग नेकदी फैफ से इब्तक से पहले आए हैं उन्हें करीबन 25,000 से नवाजा गया है, लेकिन जो नेकदी फैफ से इब्तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आओवीर से। तो भूलना मत अपने हिति प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दौंदरदास को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ, और उन लोगों के लिए जो नेकदी फैफ से इफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंद आए हैं।

विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्तान दौंदरदास ख्रिस्तस को करीबन 11 बजे एक आवी खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग नेकदी फैफ से तक से पहले आए हैं उन्हें करीबन 5,000 से नवाजा गया है, लेकिन जो नेकदी फैफ से तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आओवीर से। तो भूलना मत अपने हिति प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दौंदरदास को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ, और उन लोगों के लिए जो नेकदी फैफ से तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंत आए हैं।

दे दो प्यार और ले लो प्यार, मुद्दे इलाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुनने वालों के खिदमत में आदाबर्ष नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, अगस्त के 4 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाउन रेडियो के फूल टीम के तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे हैं, सफर मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ हॉलैंड में आए, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतजार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुदमय बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। अभी आपने मुझसे पहले भाई अनिल के जरिए से प्रोग्राम को सुन रहे थे। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन आप सुनेंगे।

ये घोरा पेशौरी मेरा तांगा लाहौरी मेरा, मैं अपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन सुन रहे थे।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे।

0: हसीन हसीन वादियों भी आपने अनवर से गीत सुन रहे थे, जिसका था मुझे इंतजार वो आ गया है। आप रेडियो फाहुन पे चुने हमारा पता है युवा रिंग का 351 पर। एक नजर बाहर की ओर डालू तो मौसम का हालात मत पूछिए, इनसे हर एक वाकिफ है। इस वक्त धूप निकला है और तापमान यानी टेम्परेचर इन अंदर तक खराब है।
1: इतनी मोहब्बत है कि अगर तुम चाहो भी तो मुझे नहीं भुला सकती।
2: नहीं किशन, मैंने तुम्हें भुला दिया, मैंने तुम्हें भुला दिया।

अगर दिल किसी से लगाया न होता तो जमाने ने हमको मिटाया भी न होता। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे। संगीतकार चित्र गुप्ता और इस गीत का लेखक है अनिल धवन। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिना, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना।

दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई कभी प्यार ना करे। अभी आपने पंकज उदास से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाउन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। वो जो जागते हैं तन्हा रातों में, वो जो जागते हैं तन्हा रातों में किसी के लिए, वही जानता है किसी को खो जाने का दर्द क्या होता है।

जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी हमने तोड़ दिया। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत को सुना है रेडियो फाहुन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। जब तक वो साथ है सब कुछ सही लगता है, जब तक वो साथ है सब कुछ सही लगता है, तेरे बिना तो ये दुनिया भी बेकरार लगती है।

मेरे दिल की है ये आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा, कब मिलेगा ये भी मुझे पता नहीं है। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, लोगों से इंतकाम मत किया करो, खराब फल खुद ही दरख से गिर जाता है।

तुम रूठ के मत जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ये तूने नहीं जाना। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा भोसले से गीत को सुन रहे थे।

सुन मेरे साजिदा, देखो जी मुझको भूल ना जाना। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से गीत को सुना। रेडियो फाउन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में इसमें देखा जाए तो 2:07 व्यतीत हो चुका है। आप फाउन रेडियो पे चुने।

तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पलखे बिछा दूँ सारी उम्र वहीं पर गुजारूंगी। अभी आपने नयनूर से गीत सुन रहे थे, संगीतकार एम अशरफ, और इस गीत का लेखक है कलीम उस्मानी।

0: अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो भी कुछ आ जाता हम लोग मजे से किसी के प्यार के रेस्टोरेंट में डांस कर रहे होते।
1: अच्छा अब देख

ढोल बजा ढोल ढोल दानिया भी आपने हेमलता मुकेश महेंद्र कपूर और उषा त्रिमूर्ति से गीत को सुन रहे थे। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत का लेखक है गुलशन बौरा।

नीले गगन पर उड़ते बादल, आह आह धूप में कर जा मेरा खेत सारा। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। इसमें देखा जाए तो 5:05 व्यतीत हो चुका है। आप फावन रेडियो पे चून हैं। हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद रेडियो फावन के अनाउंसर साथी राजन द्वारका जी इस प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

तुम सबसे हंसी हो और सबसे जवाज मेरी नजर में आई हो। अभी आपने महेंद्र कपूर आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। संगीतकार ओपी नैयर और इस गीत का लेखक है एस बे बिहारी।

भी है, तुम भी है, दोनों है आमने सामने। भी आपने लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना देवी और महेंद्र कपूर से गीत को सुना रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती।

हम तो तेरे आशिक है सदियों पुरानी, चाहे अब तुम मान चाहे ना मान वो आपका प्रॉब्लम है। अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से गीत को सुना।

मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, झोली भर के जाऊँगा या मर के जाऊँगा। मैं अपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत को सुना।

दिल संभाले संभलता नहीं, अब मुझे इजाज़त दे दो घर जाने को भी। आपने लता मंगेशकर और मुकेश से गीत को सुना रेडियो फाहन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में।

और ये तो जाना पहचाना चून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श। आपने 1 से 3 बजे तक हमारा साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगलवार को अपना मिलन होगा और हमारे बाद प्रोग्राम को ऑफर लेगा भाई राजन द्वारका जी। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुदा हाफिज, नमस्कार।

स्टेशन फा हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आंख पर और आंख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होठ है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होठ तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर कोई बात नहीं, होठ तो होठ होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

मेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूंगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

हो तुम्हें ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल। आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी सीजन फाइव होने दाई रेडियो राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्थ का क्नूप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले एक गीत सुना।

जब डो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते है, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते है। दोस्तों आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

होठों के फूल, तेरे होठों के फूल आप सुने हैं। अगर आप, अगर आपका ख्वाहिश है, अगर आपका ख्वाहिश है हो चुनने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है। हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahun Hindustani Radio.

ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 3 5 2 2 4 4 तार का नंबर है। आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। हो माजी चल, हो माजी चल, फिल्म आया सावन झुमके का सॉन्ग है। निगंतिंग निगं शस्तक में जो फिल्म रिलीज हुआ, आशा परेख एंड धर्मेंद्रा दोनों फिल्म में काम किया।

राजेंद्र कुमार सैरा बानू के साथ और धर्मेंद्र शशिकला के साथ, और धर्मेंद्र ने इस फिल्म में नहीं खती फ्रॉल अदा किया, राजेंद्र कुमार का तो होफ रोल था। लेकिन दोस्तों इस फिल्म रिलीज होने के बाद हर एक लोग फिल्म को देखा, धर्मेंद्र को और पसंद किया राजेंद्र कुमार से ज़्यादा। राजेंद्र कुमार को जब इस बात से मालूम हुआ तो बहुत गुस्सा में आया और वो कहा कि अब मैं धर्मेंद्र के साथ फिल्म नहीं बनाऊँगा। लेकिन पैसा पैसा पैसा, जहाँ काम मिलता है वहाँ काम करना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद एक दूसरा फिल्म फिर ये दोनों ने बनाया, ये दोनों ने मिल के इस फिल्म में काम किया। अभी सॉन्ग के बाद फिल्म आई मिलन का बेलका, एक दूसरा सॉन्ग के बाद आपसे मैं बताऊँगा। तुम कमसिन हो नादा हो।

फिल्म आई मिलन का की बेला का सॉन्ग अभी आपने सुना। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरा फिल्म जिसमें फिर एक बार राजेंद्र कुमार का होफड़ोल था और बैरल था ना धर्मेंद्र का। फिर भी फिल्म देखने के बाद लोग धर्मेंद्र का और पसंद किया और इस राजेंद्र कुमार इस बात से खुश नहीं था। उसी फिल्म का सॉन्ग मैं पेश करूंगा। गीत सुनने के बाद आपको जरूर पता लग जाएगा किस फिल्म का बात मैं करता हूँ। माला सिन्हा भी इस फिल्म में काम किया, राजेंद्र कुमार, कुमकुम, नसीर हुसैन और बहुत से लोग।

0: जाते ओ जरा जाते जाते।
1: फिल्म ललकार दोस्तों, जिस फिल्म में राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र साथ काम किया और फिल्म देखने के बाद लोग धर्मेंद्र को और पसंद किया, क्या बात है दोस्तों। उन दिनों में धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर नहीं था, लेकिन राजेंद्र कुमार एक जुबिलियम स्टार था दोस्तों। फिर भी धर्मेंद्र का को लोग बहुत पसंद किया इन दोनों फिल्मों में। एक दूसरा फिल्म का कहानी और है, पहले सॉन्ग चलेगा।
2: गीत गाता हूँ मैं,
1: एक्टर के बात होगा।

विनोद मेहरा ने अपन दिल के बाद पियानो के साथ कहा है दोस्तों, और बगल में राजकुमार एक सिगारा पी रहा है। प्यार मोहब्बत की कहानी इस फिल्म में, और फिर भी विनोद मेहरा इस फिल्म में काम किया। विनोद मेहरा के बारे में एक दो बात होगा, एक दो लाइन चलेगा। मुंबई पहली टेक में इनका घर है और पैदा हुआ है निखिल फैम फिर तक अमृतसर पंजाब में, और पहला काम किया है छोटा सा रोल, छोटा अभी उतना उम्र के नहीं, मैं सोचता हूँ 15-16 साल के था, तो एक रोल अदा किया ये फिल्म रागिनी में। और विनोद मेहरा ने 4 बार शादी किया दोस्तों। पहले सॉन्ग चलेगा, उसके बाद हम आपसे बताऊंगा किस किस एक्ट्रेस के साथ विनोद मेहरा शादी रचाए।

विनोद मेहरा। विनोद मेहरा चार बार फिर केरे जिसे मान पुत्रो, पहला बार मीना द्रोगा से शादी किया, दूसरा बार बिंदिया गोस्वामी से शादी हुए, तीसरा बार जीपी दत्ता और चौथा बार रेखा मशहूर एक्ट्रेस रेखा के साथ शादी किया। जब विनोद मेहरा रेखा को घर पर ले गया शादी के बाद, तो विनोद के माँ ने ये रिश्ता नहीं स्वीकार किया और रेखा को रेखा के साथ बुरा बात करने लगा, और इसी कारण रेखा ने विनोद को छोड़कर विनोद से रिश्ता तोड़ दिया और चला गया विनोद के घर से। जी हाँ दोस्तों, चार बार ये आदमी शादी किया है। एक दूसरा सॉन्ग भी चलेगा विनोद खन्ना का, फिल्म घर का, निहरी आख्तन सी फिल्म तक में जो रिलीज हुआ।

क्या जानना तुम क्या होता है, तुम कौन हो। जहां देखा सामने नजर आते हो तुम, जहां देखा सामने नजर आती हो तुम, प्यार के परछाइयों में हमेशा याद आती हो तुम, मेरे ख्वाबों के दुनिया में रहती हो तुम, मेरे पास आके मुस्कुराती हो तुम, मोहब्बत की राहों में आके तड़पाते हो तुम, प्यार हमें देकर फिर दूर चले जाते हो तुम, कौन हो तुम। धर्मेंद्रा, दोस्तों धर्मेंद्रा एक मर्द जो प्यार करने के लिए जब प्यार का समय आया दोस्तों तो वो झगड़ा किया, अपने बच्चों के आँख में आंसू भी देखा, शादी करने के लिए अपना धर्म बदला वगैरह वगैरह, सिर्फ अपन प्यार पाने के लिए दोस्तों। वो सोचा था कि ये जंग उन्हें अपने प्यार के बाहों में परछाई की तरह बांध लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सॉन्ग चलेगा, उसके बाद मैं बातचीत करूँगा। धर्मेंद्रा, आप जानते हैं, हेमा मालिनी से भी वो शादी किया।

वृंदा का प्यार जो हेमामहन से था ये गलत निकला। जी हाँ दोस्तों, ये बात गलत हुआ। आज जब धर्मेंद्रा को सबसे ज़्यादा सहारा की ज़रूरत है तो वो नहीं है, हेमा मालिनी नहीं है। साथ देती है उनका

पहली बीबी उनका धर्म पत्नी जिनसे पहली बार शादी किया प्रकाश कौर ने। और धर्मेंद्रा का उम्र तो इस वक्त 90 साल से उच्च और ज़्यादा है दोस्तों। और हेल अनस्तक सिख, आप जानते हैं जब उनका समय था, धर्मेंद्रा का समय था, जब वो मैदान में खड़ा हो जा रहा था तो एक पहलवान के तरह, और जब गुस्सा जाता था बात करते थे तो लोग दर्द आते थे, वही धर्मेंद्रा दोस्तों। आप जानते हैं उम्र के साथ सब कारोबार चलता है, जो उम्र कम है तो आप अभी बचपन में हैं, और जब उम्र बढ़ता जा रहा है तब जवानी आ जाते हैं, उनके बाद बुढ़ापा छा लेता है। फिर भी ऐसी तो जिंदगी है। एक दूसरा फिल्म राजा जानी, जिसे धर्मेंद्रा अपन स्वीट हार्ट हेमा मालिनी के साथ काम किया, उस फिल्म का

हो राजा जानी, हाय नीली आंख वाली, है नीली आंख वाली तेरे मतवाली चाल, तेरी गुलाब जैसी होठ, लाखों में एक तू ही तो हो, लाखों में एक तू ही पेटो हो, जिस पर हम है बेहोश।

हाय हाय, तूने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? मैंने सोचता हूँ कि ये काम हर एक ने किया होगा। प्यार तो हर एक करता है, प्यार बांटता। चलो दोस्तों, प्यार है तो उन्हें बांटना चाहिए। और अगर आप जानते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आँख से शुरुआत होता है और जाकर दिल में समा जाता है। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हो साथी चल।

प्रोग्राम में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ चटनी सॉन्ग, तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए क्या बात है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग सर तो तैयारियां कर दिया है तो उतार के बिग दिया है दोस्तों डांस कर रहा लेट्स डांस

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नादिया सिंह दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

0: Yamaha Productions.
1: लेकडाउन मीनानी कार्लेस ड्राइवर द्रौपदी के आवाज में आप सुनेंगे.
0: My,
1: Let's dance.

अबकी बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग सॉन्ग फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा ने रिसीव सेशन के बाद है जब ये सिनांदिस आया और उसी समय पर एक बार बना था जिससे एक पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पता पता।

मेरियम मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान। शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की।

और दोस्तों हम तुरंत बढ़ जाते हैं अपना समाचार को लेकर। और समाचार क्या क्या होगा दोस्तों, आप लोग को तो पता है, जॉनी पूरा दुनिया को शेयर कराएंगे और करा कर वापस हम आ जाएंगे। अपना सूरीनाम और नीदरलैंड का भी कुछ खबर आप लोग को हम जरूर आज बताएंगे दोस्तों। 15 बरिस के 15 यारख लड़का

सिखावे कि दुनिया क्या है। और 15 बरिस के लड़का सूर्य में दाम देश में भैया और गैला एगो क्लीनिंग साख जेकर नाम बा कैली फैशन लतूर वेख में भाई और गैला हुआ सले पर भैया सले पर चोरी करे और कपड़ा चोरी करो ये लड़का के भविष्य का होगा भाई। 15-year-old किन किंत मुतिक्षा एंगलग और उकर भविष्य का हुई रात के इगेल है भैया ऊपर से क्वालिफी जेर दे दिवस्ताल करी से भैया ना सोचे दुकान में गए ले और चीज ले के ये भीम चल गए ना भैया प्रोफेशनल दिवस्ताल करी से और गए ले कपड़ा और स्लेपर चोरी करे भाई। हाँ और बोले है एखनार जो रहसा के सी हाँ बोले सनिचर के 1 तारीख अगस्तस के 10 बजे बोले हम अपन दुकान मोई से बंद कर ली है। सोमवार के सवेरे बोले व्यर्थ है दौर अनुभवा कर फान फास्ट फूड रेस्टोरेंट खबेल मैंने मेडे डीलिंग दैट एर वाज इन ब्रोकन वहां पे एगो वक्त रहा फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सवेरे सवेरे के बेल कही बोल तो दुकान तुरान है और अंदर नेमर भैया दाद सही देर फन विंकल ओपन स्टोन और बोले है फरमूद दाद दाद ओवर द ओम हेनिंग सेन गेक्लोमन एंड फरफोल्कंस विया द सही देर द विंकल इज बिनन गedrongen जो कंट्रोलर भैले भैया तो बोले टी शर्ट गईले और वो मैरक अंडर आर्मर सेना के नॉर्थ फेस एम्बेस रकम रकम कॉर्ट ब्रुक सब चोरी हुई गए सिपाही गए और फॉर स्किल इन खुदरे पकड़ान है भैया ऑन द सुकरी से बोले हैगा तेज से पुलिस और वेयर द फॉर स्किल इन खुदरे इन बसला रूमन एखनार हरकेंदे देसे लातर अस एखदों फन जैन जाग भैया और 15 बरिस के एक येरेमी एम पकड़ी से ओके और गए लेगा बोले ई लौंडा एगो लौंडा रा करिया करिया ई बाइक पे लतूर वेक में रही तुन है दुरन मन वेट आंखस प्रूक मैंने फरसूक ओम अ लिफ्ट volgens hem had deze man een grote jumbo tas en een zwarte plastic zak met kledingstukken bij zich. Bolle, de verdachte verklaarde verder dat zij samen op de e-bike vertrokken, maar bij het zien van de politie de tassen op de grond gooiden en wegrenden. Karia Nike rapandra bij Skilunda ketien go slipper en van alles ik heb pakalise hamare janta. To aanch hamara Suriname ke bhavish dekhle bhaiya 15-year-old jongen aur शुरू कहीं से अभये से दुकान तूरे के चोरी करे के तो ये अपन तुकोम्स में भैया इससे कर एगो बहुत बड़का का बोलेगा डिफ रहेगा अने का बोलेगा माफिया रहे भैया वहाँ जो छोटे पसे ये सब चीज करे लगे तब बड़का हो तो के औरो एरफारिंग हो जाएगा तरी रखेरिंग के ओर हम जाए भैया सीमोन और गैगरी रुसलान के रखेरिंग के ओर हम जाए है नानी तो बातचीत ई हो रहा है भैया बड़ी गर्मी गर्म है सूरीनाम देश में और अभी आप बताएंगे हम बताएंगे आपको कि सेड्रिक सिम्पसन सैमसन का बोली से जनता बहुत नाराज है प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन के बोले एक बरिश हुई गई है बोले अब देशवा में इको फॉर बेहतरिंग न आयले इस ओही के आदमी लोन कपड़ी लोन अब क्लाख करे है कि बोले और खराब हो गए भैया संतोखी के रखेरिंग से बोले और ज्यादा खराब हो गए हैं। तो यहाँ जेनिफर सिमोन्स जो हम लोग के प्रेसिडेंट थे सूरीनाम के औ बोले हैगा बोले है ओकर कैबिनेट जो है मिनिस्टर इन हर कैबिनेट बोले ओ मांगेगा अरे शिफलिंग भैया मांगे अडमियन के निकारे तो एक बरिश हो गए अब तो जाए निकारे सूरीनाम के गो कानून है भैया जे एक बरिश तो मिनिस्टर बाटे तब तू जिन चुके निकार दी तो तू जिंदगी भर पैसा पइए बहुत उसके रखेरिंग में भैया 50-60 गो एक बरिश के बाद में निकारत रहा उस सबके जिंदगी भर पैसा मिली गा ऊ एगो स्मेरख अन हेल फिश ऐसे बोल ले भैया अन पॉलिटिक हैगा कि एक बरिस तो के हम लेला तो अब ओकर बाद में फिर एक मिला धरबे तो फिर एक मिला के धरबे जो ने सब के जिंदगी भर तुसी का फॉल्स पे खरातस में और जिंदगी भर पैया
पैसा पहिए ते इकर बारे में संतों की ब्रेंसवाइक के रखेरिंग मात्रा ई वेतवा निकारे मालूम न वेतवा निकार पाए रहा कि ना निकार पाए रहा और यहाँ बतावे है का मांगे है रेशफल करे वेलफिन से दाते मिनिस्टर से इनवार एंड मेयर सो मुतन खबरन स्टार्ट सो फसिर नाम फॉर द टेजेस रखेरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडा आन कि ओकर रखेरिस ओवरनामे vorige jaar is gebleken dat hij haast alle minister heel veel kapot was en dus gerepareerd moest worden. Lekker hier betekent dus toe bole, je hebt altijd mensen die een extra schepje erboven opzetten. Isabaan Simons betawe he, maar na betawe he ga je reshuffle kerie. Minister wat ke niet kerie, toe paisoa paai ke na paai oker baare me na likhi se hier bhaiya. Staatsu banadurken dat de reshuffle aan de ene kant iemand anders de kans heeft om de minister het werk beter te doen. Maar de andere kant kost dat het land ook veel geld. Vandaar dat zij beter vindt om daar waar nodig minister te ondersteunen. Steunen, willen volgens Simon zorg er gebrek van decentralisatie in het land. Komende jaar is het jaar waar ik graag wat meer ga werken aan de herstructuring van de overheidssystemen. We willen werken naar een raamwet. We willen werken, toch het ik maar eens mee kan, dan ga ik mevrouw Simon. Over het jaar de president moet werken. Nu is de vraag, John Adamienke, de Sofalke, de minister, gaan ze wel de geld krijgen? Salaris de hele leven? Of niet, want als die mensen, het moet zo zijn, als je je werk niet doet, moet je ontslag krijgen en dan moet je ook geen cent krijgen. Ga maar solliciteren voor een ander werk. Zo is de leven er. Het moet niet anders zijn. Wij zijn in Suriname niet zo ontwikkeld. Artomange en de Miloke Ego luxe leven die we op deze manier 1 jaar minister blijven en daarna ontslag geven of een reshuffling en dan word je de hele leven namelijk verzorgd door de belastinggeld van onze bevolking. To ye baat hai hamare Suriname ki janta. Ab dekho yahan pe batawe hai रखेरिंग बोले सिद्ध ए रेपराची फासे बोले अबे हमने ठोंक ठाक करेला रखेरिंग वहां में एक मरीज हो गएगा रखेरिंग जिमोन के और रिसलांद के एनपीएस के और बोले हम लोग अबे रेपरेर करेला भैया तो के चाहे काम करे तो के चाहे रेपरेर करे के प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन बोलेगा बोले हम लोग के खाते को बहुत ऐदाखिंग आएगा अरे जे तू ले ले देसुआ में तू जानत रही कौन ची तू पहिए तो बोले 3 तारीख अगस्त के बोली से और बोली से प्रेसिडेंट से पलेस में बोली से स्टार्स बोली से गा बोले एक बरिस बोले स्केच से द प्रायोरिटीज फॉर द कमिंग पीरियड सिमोन विद द रेगिंग सिक मोमेंटल इन रिपरासी फासे बोले हैगा अब ओके हम लोग स्पाना आना लेके रख रेंगे वहां के बनाएला भैया बोले टूटल फूटल ला तो ये कौन मोदो है भाई तो ये बात है हमारी जनता सूरीनाम की और हॉलैंड की जनता जो हमारा प्रोग्राम को और भैया हम जाए तेरी दिल्ली के ओर इंडिया की ओर हम इंडिया में भैया तू जाने हैं वहां पे ऑन्टविकलिंग बहुत जबर है भैया जब से नरेंद्र मोदी आयल है और जोगी बाबा आयल है देश के बढ़ंती बहुत ज्यादा है अब बोले दिल्ली में से स्टीफ इन ऑफ इलेक्ट्रिक फुर्तेगन इस ट्राई टेगन लुक फॉर फेलिंग जो इतना धुआं हुआ है बोले वो धुआं खातिर बोले सब बंद करी और ज्यादा इलेक्ट्रिक सब कुछ हुआ होगा बोले इन द्रिक विंकल खबी जहां दिल्ली में बा हाउसटार फन इंडिया और बोले हैगा वहां पर बोले हैगा फ्रागवाकेंस ऑटोस ड्रग बेसिक में अपलादन बे द वेनेगे बस्किकबार लास्ट स्टेशन दी बिल सिमुलेट एन फन द ग्रोस्टे uitdaging एन बेलोफ्टस फन द दिल्लीस एंबिशियसे प्लान ओम स्ट्रालबिल ड्राटिस टू फरगुडन एन ब्रुग द लुक फॉरफेलिंग aan te pakken एक तारीख जुलाई के इंट्रोड्यूसड दिल्ली अ न्यू बलेट दैट इज gericht in 2027 bole jada bole electric gaadi wahan par chalega aur yahan pe bataye gaye bhaiya bole flexible and toegankelijk last station hua rahega expert bana de ki delhi electrification moet uitgraden en meer moet inzetten op hernieuwbare energie om aan de stijgende vraag te voldoen mensen to ye baat hai hamare pyare प्यारे जनता तो आप
आपको हम अपना प्रोग्राम को और आगे को सुनाएंगे भैया। नीदरलैंड में बहुत जबर झूरा है, जितना आदमी के तैन है सबके ब्रीफी गए हमें तक के अब पानी तो के न चाहे तरकारी के सींचे के ओमदाद झूरा बहुत ढेर हो गए है दसवा में। हॉलैंड के बांची थे जितना आदमी के तैन हैगा यानी रिक्रियासी तैन है जो तरकारी अरकारी बेचे है उ सब आदमी के अब पानी न चाहे सींचे के। तब सोचो ये पानी ना है तो तरकारी प्यासे मर जाए भैया, ये हो बात है हमारे जनता। तो ये बात है हमारे दोस्तों, अब देखो जाए अब और क्या हुआ है। बोले वी एस एर बंग फॉर मारवेन, बोले मारवेन में के डड़ा यहाँ लिखल भैया। मारवेन रीबा के मानचित हुए है जो जिंदगी भर से एवन लंग फ्रांस रह गया फ्रांस कुयाना से और मारवेन तो जाने अल्बिना से। बोले हजारन लोग हजारन गो इस लीफंस लीफंस अदर बोले जिए है वहाँ पे मछली से जिए भैया, हंडल से जिए है, काम से जिए है। बोले रिफीर फॉर मेन खमीस कापन दी आन वेद सैदस आल जेनरेशन लंग मेट एलकार लीवन। Toch leek de Marwijnen de opgelopen periode vooral een rivier van onzekerheid bolle te zijn geworden. Op bolle tijdens de Kroetu, Stoermans eiland mee, abobke voorzitter Ronnie Brunswijk bolle hega, bolle hego perka protocol hega stemkrikken waren mee. Bolle democratisch mag ieder partij een eigen afweken maken. Op bolle heker waren mee Brissen ze jarenlang zijn sernaam om Frankrijk onderhandel kere hega, beter afspraak kere ke, gezamenlijk grens ke, 2021 mee. Ego protocol bijla, onderteken bijla, toenmalige regering, Brunswijk vice-president ze, op een vervolgens consultatie met de grensgemeenschappen, op een hege behandeling. बहंदलिंग के बारे में हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता। तो जैसे जैसे समाचार रहेगा आपको हम बताते रहे। अब देखो भैया, एगो औरत भाई बड़ी चकल्लस करी से, हाँ औरत भैया सिपाही के ओतो लेके भागे। सरनाम के भैया, सरनाम के बात है और ये बात हुए हैगा भैया लेसुन के रास्ता ओकर नाम बा कनोफ्लो एक के बात है हमारे जनता। तो एगो रास्ता के नाम है कनोफ्लो, बाकी कनोफ्लो तो सुरीनाम में ना बवा है लेकिन रास्ता के नाम है नानी। तो एक औरत भैया सवेरे सवेरे सिपाही के ओतो चोराले भैया बैठ कमाग। बोले ओतुआ जो रहा अब ओके सब खोजे है तो जाए के पाई से कनोफ्लो वेख में भाए। कनोफ्लो वेख में पाई से बकी बस कारक तो हुआ ना रहा। सिपाही बोले हेगा, बोले फुरते फिर द्री कर एन दे उकर नाम रहा जो लेडिंग फन अखेंट औरत है। बतावे फॉल्क्स द पुलिसी रिपोर्ट क्रीक द बमांगने पुलिसी फुरते अंडर लेडिंग फन एगो सिपाही के नाम बा अवतार द ऑपड्राग असिस्टेंट इज द फलीने नाबत नादात है दिस फुरते फन द डीएनजी वाज वेगनोमन। ओतो वाले के भाग गया बहुत सिपाही एक एक खोजी से भैया लेसुन वेख में जाए के पाई से। सिपाही सिर्फ येर द इंटेंसी इन हर कबीर रोंद मखेंटा कनाल वेख एन द ओमलिगेंड स्वेगन zij wegen aanvankelijk zonder resultaat. Op het eigen hega ter plaatse werd ook de vrouw aangetroffen die het voertuig zou hebben meegenomen. Zij vertoonde volgens de politie verward gedrag waarna om extra ondersteuning werd gevraagd. Te beloof verward ra beloof ka mori na mooi ka matra baki sipahi ko to lik to peel bhangel he. Bole omdat de contactsleutel van het dienstvoertuig niet meer aanwezig was werd besloten de autosleepwagen weg te voeren. Toek ik hier के लेगे मैं कहां से लेगे ये औरतिया ओकर बारे में यहां पर ना बताई से हमारे जनता। किसी पाई के गाड़ी लेके सबन चल गए है तो जब मालूम पड़ेगा तो आपको हम जरूर जरूर जरूर जरूर बताएंगे। एक भाई और बहन भैया सब कोई रक्षा बंधन माने के दोनों के हाथ में हटकड़ी लगल है। हाँ भैया के हाथ में
भैया के हाथ में दीदियां बांधे हैं रक्षा बंधन, यहाँ भैया और बहनी दोनों के हाथ में सिपाही बानी से हट कड़ी लगाई से भैया हंद बुए लगाई से कारण कि बुई तारीख के भैया ये दोनों जात्रा स्के फॉल पे ना सांडर ये पे के सभन पकड़ ले से दुर्यक्ष भैया दुर्यक्ष टीम इस सब के पकड़े रहा पकड़ ले से भैया ये दोनों बोले है स्टोंट नेट नार है बैठन तो फ्रैक्चर तक कर दे सब कुछ हो ही गया रहा अब वो ही तू जाने लास्ट पासपोर्ट तो चेक करके अब तू जाइए बहरे या बहरे चलिए प्लेन में और बोले हैगा एकर बारे में सिपाही फरमूद करत रहा कि दोनों फरदाख्तन को के इन बोले चस हादन इन खसले ना लॉलीपॉप बोले चस दुरुली ले रहा इसको तू फरमूद कर ले रहा और ये दोनों के नरकोटिका ब्रिखान पकड़ के ले गए हैं ऑन सुक्करी से देखो तू ये 50 यार फरमुदलक कोकाइन ऑप अ नैचुरलक वेजे से uitgescheiden terwijl de 46 bolletjes heeft uitgescheiden 46 bolletjes op hij wat 52 vermoedelijk kokertjes bolletjes gaan. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man totaal 116 bolletjes zou hebben ingeslikt en de vrouw 91 bijna. De otra illele gaan bolletjes naar Berlijn bolletjes. काके बोले जैसे है मौसी तू समझ गई ले हम कहां मांगीला कहां मांगीले जाए हमारे जनता तो हम जाए नीदरलैंड में भैया स्वोल के ओर तो स्वोल के जनता भैया एगो हो को बरूप सबन टेकन कर ले रहा बरूप कर ले रहा स्वोल नारायण बकी सखवा सबन हराई के भैया ऊपर एगो इस प्राक कि एगो नवा आजद से ही दिस असील सुकर के खबाव हुआ आएगा तो हुआ के बोनर जो ने स्टाच हाखन स्वाल के होकर बरूप गईला एगो साथ में सबन हार के खमें तब स्टीर में ओवर इन स्प्राक रोंद कौंस वा नियो असील सुकर सेंट्रम इन हुन वेक गमेंते ही volgens het gerecht op weliswaar op sommige punten onhandig maar niet onrechtmatig geopereerd februari में एक स्टिकिंग है लीव बार स्टार्स हाखन बोले को कोर्ट खदिंग कर ले रहे के बारे में और बोले है का अब स्ट्राफ ऑफ ऑन ड्रंक्स ओम 10,000 यूरो पर दाग चाहेगा इन होकर बरूप ऐसे द स्टिकिंग दैट द गमेंटे alle voorbereidingen voor de realisatie van het aanzet per direct zou staken bolle tehantra ban kareke op staven van het dwangsom van 30 jaar per dag en dat de gemeente een participatieproject traject met de omwonenden zou starten zullen vindt van sinds 2023 ongeveer 10 zo vluchtelingen op aan de Meeuwenland in de wijk Kamperpoort gaan. Locatie bolle 1 februari ke bieden hoe saal mee stemt de gemeente in met de komst van de nieuwe AZC in Staatshagen. Daar moet volgend jaar ruimte komen voor de maximaal 400 asielzoekers ke hoan sabandhariga. तो ये बात है हमारे जनता हम बोली कुछ असील सुकर के बारे में बताइए भैया जबरदस्त आगे लगल है इना दूसर देश में हम लोग के देश में भैया नीदरलैंड में भइल है नॉर्थ लिम्बर्ग्स तो ऑस्ट्रिम में भइल हैगा नेचर ब्रांड है जहां पे भैया बहुत जबर जंगल में आग लग गए है हां नेचर ब्रांड है और बताएंगे लुक फोकट है कान ब्रांड फर्दर अपलाइन दैट ब्लूसन ड्यूट नॉक सीकर टू वुड्सडक मेंसे यहां लिखले नो De brand breidt zich verder uit richting de oosten. Oor je maand in Noord-Limburgs de oosten mee. Betaalde je 100 hectare bij jarige he. Dat komt neer op 1 vierkante kilometer.
100 hectare 1 vierkante kilometer ke baanchit hue burgemeester jo nega uit de Haag jo ne gemeente Van Rijke bole hega seven jor torsel butawe he. Gelukkig is er nog steeds geen materiële schade in de vorm van objecten of persoonlijk leed, zegt hij. Brandlijk zelf de ruiken in Friesland met zijn makke hoe ze ke jo agia he. Friesland met zelf admike utra dulig hawa geil he duwa ke obole de brand brak maandag aan het begin middag. Er is toen een Nederlandse alert verstuurd vanwege de rook. Opbollegen vanuit onder de meer Friesland, Overijssel, Gelderland meer. Melding bij de brandlucht waren we. Toen waren we 100 hectare. 100 hectare. Agi se janiki hamukke. Natuur brand veel he. Aru he Limburg mee. Venezuela ke bhaiya.

aan de bevriende land, bolega verwoestende arbeiding op hele, bolega hadjarige voedselpakketten partijse, een pakket 10 kilo, bolega oma hij 52 ton rijsega, 2 container halal hij verscheept, daarna volgt via 7 aanvullende zending van 9 ton. Toen ik er maar mee bij sociale media pe admiloon, bari naraji de kaise, ki hem lukke des ke apre heul op kam hij. और तू वेनेजुएला के पठावे हैं बाकी हमारे जनता सुरिनाम के वो मुतो ओक अकेचे लेर ओम आंद्रा लंद ओक द स्टेन ना खाली अपरे के स्टेन हां जब देखो तो फैलाए रहियो तो हमें ई दे तो हमें ऊ दे तो ई कर तो ऊ कर जब दूसर देश में तो बुरलांड में प्रॉब्लम है ना मुझे ओ कर हेल्प आज द मोगलकाइट इज नेचुरली हम लोग के जनता के हुआ परे पकेट के काम बा मैं मुझे ook andere mensen denken hoe de dingen zijn, want op Suriname met die pakket behoort hij als posten dan hem nog kabin en jij ook erbare mee bole, ki pakket waar na patao dusto ego 52 jaar ke admi bhaiya sipahi ke mari se badrai kari se bhaiya med dout aur ichiyo bhai ego are ding lage bhai le hamari janta ego 52 jaar ke sipahi police fan centrum shahar ke banchit hai paramari bo ke banchit hai aur bolega turtona lant me bole incentive इंसिडेंट हुआ भैल है जहां पे यू को हामा इन द बीर थे वार पुलिस आखेंदे बोले बेशक रहा अफांदल करके को अरेडिंग के बारे में उतरे में बोले फलोफ के बमुई दे फरदाख्त बमुई करी से बोले हर लालक में दे वर्कसाम ही दे फन पुलिस अब बोले ओकर बेटवा फर और साग द फन अरेडिंग सेन खवीज बेटा हुआ जो रहा वही फर और साग कर ले रहा अब बपुआ गैला बमुई करे सिपहियन के कितनों पर काम ना मोई करे हैं उन दास मेरे बफीलें ओम अफस्तान ते नहीं मफन पुलिसी हर वेरक तलात दून ब्लीव द मान दी अग्रेसिव इंटिमिडेरन द अपस्टेले दोर सेन खद्राफ फुल बना देदल अन द आंद्रेडिंग सिर्फ बद्रेक्ट एल वेर द अफहंगने हांदलिंग फन द फरकेस ongeveer ernstig gestoord mensen और इसी पाही हुआ है और जे के अरेडिंग भैला ओके जाई के सो तू बद्रेक करिसेगा सिपाही लोन भैया और ऊपर से अदमिया सिपहियन के बोले हैं मैंने दूत हैब बद्रेक एंड फोकस इन गेसिक्ट हैब गेस्लागेस को तुन के मरबो करिसे सिपाही लोग के भैया चोट लग गए हैं और बोले हैं तब एक पकड़ के और ले आए के बंद करिसे आउट ऑफ न फन पुलिस ता द मान वेर दो द पुलिस आन खौर ओवर गब्रा द अप टू जाओ सिपाही के बंद करी तो के पकड़ के कायदा तो के ना भैया अरे दे कर ला द पुलिस मान हिन वर्क डन ondanks de Nederlandse politie een hele slechte naam is, zijn er heel veel politieagenten die goed zijn job doen mensen en laat die mensen hun werk ook goed doen. Zo gaat het en het kan niet anders. Abhaya dekho tamasa. Ego dukaan hai Suriname des mein bhaiya jahan pe murgi bika hai na skip okar naam ba aur ye hai shahar Paramaribo ke banchit hai choran ghusal hai dukaan mein mausi aur nagala murgi ke tangdi chori kare ha ye sab gaila kalai se nikare aur kalai se nikar ke bhaiya ab ohi jaat raha bas utre mein sipahi pahunchare dada re मैया दैया लेके कलेज पलेज बिक के चोर भागल भैया अब कलेज वाद निकाल ले रहा दुकानिया में से ओम बोले ले के भगल है मसीपाही भैया दौराई के सब के पकड़ ली से तो अपि चोरवन हाथों से गैल लतों से गैल मतलब हाथ से कलेज छूट गए और लात अब सिपाही के खाइए तो ये बात है हमारा सूरीनाम के हमारे जनता दोनों के सिपाही पकड़ के और ले गए है बोले अब चल तू गाना गाओ उमा नांगा मांग गयो और उमा नांगा मांग ना गयो तो मुर्गी के गोश्त ना पियो खाई के जहल के बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं सुनाते हैं एक गीत आप लोग को हम सुना देते हैं उसके बाद हम तू
तुरंत आ जाएंगे आपके पास हमारे सुरीनाम

और जनता आपको कौन गीत हम सुनाई, बहुत खूबसूरत है ये गीत। भैया गंगा

समाचार को और यहाँ बताए गए भैया सूरीनाम देश में बड़ा गर्मी भैया 40 खराद हो गई है गर्मी हेत और फिर तक खराद इन सूरीनाम स्टेफक ऑनवेयर्स बैयन ऑपकोम्स इन सूरीनाम जबर पानी बरसी लेकिन बहुत गर्मी है तो जे सूरीनाम को जाना भैया आप लोग को मालूम चाहिए कि क्या बात है ये 3 तारीख अगस्त के बातचीत है बोले है का माकन में द्रकन वारंवेर को फॉलो दो रस्तेर के तू नहीं मतलब काउंस ऑफ रीगन एंड ऑनवेयर्स ऑनवेयर बैयन बेनलांत में भैया जबर पानी बरसी लेकिन 40 खराद गर्म है यहाँ बतावे सवेरे सवेरे खरोतन दिल झूर रही और बोले संध्या कैसे बोले सेफ न डर तक तो फिर तक खराद सूरीनाम में टेम्परेचर हैगा और बोले हैगा मिनिमम टेम्परेचर 20 तक रहेगा तो रात के साथ रात हुई भैया और बताई गई हैगा फॉल का बीच फरवक्तिंग गल्फ फ्राइवेल डिस्ट्रिक्ट इन काउंस ऑफ द ऑनवेयर्स बैन इन परमाणु में वानी का लिखन टेम्परेचर ओवरडाग टुसन 24-32 ग्राद कोरोना इन केरिसी पालविनी क्विक ऑफ तो 33 ग्राद मेंसी तो आप लोग कम ना डड़वाईला बताईला वो गर्मिया के सब कोई तेरा बोली बाप रे बाप हमें वो हफ्ता उड़े के कैसे रहबे हम बोले कैसे रहबे हमारे कोलिखा कल गया है नाम नहीं लेगे कौन तो उसको तो पता चल गया होगा कि कैसे है चिजवा तो ये बात है हमारे जनता गर्म जो है गर्म जो कितने लोग को अच्छा लगे भैया कितने लोग को तो बोले हमारा मान के गर्मिया ना में ठंडवा सहाइया है बोले गर्मवा ना सहा है हमार बात वही भैया कारण की तो दोस्तों ठंडा जो है तो ठंडा है तो उससे आप अपने कपड़ा जो है पहर कर अपना देही को गर्म कर सकते हैं जैसे जैसे ठंडा यहाँ है जब बहुत विंटर है भैया तो यानी कि मोटा यास पहरो भीतर में टी शर्ट पहरो फिर तुरई पहरो और जब और गर्मी है तो टी शर्ट ना पहरो यास ना पहरो तो फिर ऐसे लेकिन जब गर्म है भैया तो लास्ट जो ना बिना कपड़ा के चलिए तब वो गर्म हुआ लगेगा 40 खरीद हुआ दिस दैट इसमें से हम जाई है एक 13 बरिश लड़की की और 13 बरिश के एक लड़की सूरीनाम के भैया लंदन ओके दुई दुई को ले गए है नानी ना गए लूस एंड मामा पढ़ावे नानी ले गए ओके पेंशन में भैया सूरीनाम में वो जाने पर्दा वाला घरवा बड़ा ढेर है तो खोरदेनवा घीत दिया भीतर में वो तो लगल नाटक खेला है भीतर कमरा में धना धन खेला है तो सूरीनाम में ये पेंशन वन चारों बगल है भैया और लिखल है बोले अपार्टमेंट डाल जाइयो सोचिए हम गली फ्रांसी से जाइयो अपार्टमेंट वहाँ हिर कले जहाँ कहाँ देखियो खरदेन है वहाँ ना जाइयो तो ये 13 बरिश के लड़की के शुक्रवार से ऊपर से स्कूल से एक 17 और 20 बरिस के लंदन एक ले के गए है मोंगो के पेंशन में भैया वो है उस सूरीनाम में तो मोंगो में ले गए भैया फरनोमन वार्ड कि ओकर माई गैल सिपाही में नालिश करी से कि ओकर बिटिया घरे ना आइल है और बोले तेज से ऑन द शू ब्लेक दैट इन मेच लातर सेल्फ द स्क्वाम बोले ओकर माई जो ओके कॉन्फ्रेंस तेर करिस कि तू कहाँ रहले तो लड़कियां बोले हम दुई गो लंदन के संगे गरी पेंशन में है स्वैरक बनावे नानी तो बोले द मुदर दे आन खिफ्त ओ हीरो जाए के दोनों लंदन के सिपाही पकड़ी से और दोनों के पकड़ के बोले है मेंदर या रख रहा है एगो अभी दोनों के पकड़ के लेके अब बंद करी से तो ये बात है भैया 13 बरिस के लड़की के और स्कूल के लंदन ने ले गए है और पेंशन में भैया मेंदर या रख ना है स्वैरक बनावे स्कूल के भैया दूसर है स्वैरक गैला बनावे तो ये बात है हमारे यारो हमारे जनता भैया हम यहाँ देखीला संदराई के रईस खर्च जो बा बेना 2 किलो कोकेन लेके हबड़ा होत रहा हाँ 2 किलो एगो फिलन देर तक यार के अदवी सनिचर के बात है 2 किलो कोका लेके जात रहा भैया बैतलान
और एक भी दृक्ष तीन पकड़ ले, अरे एक गो का पकड़ ले भैया, दस गो हबड़ा हो जा है, तो जो पकड़ा वही लिखा है, अब जो ना पकड़ा थोड़ो लिखा है। और इधर ले रहा अपन रईस कॉफर में भाए, रईस कॉफर में ढल ले रहा नेहत ही होंद अख्त देर तक खराम ढल ले 2 किलो और बोले एक नौकितका नारकोटिक का बरिखा दे लेगे और पकड़ के ना तू लग बन करेगा। जब तू ऐसा चीज करिए तो सूरीनाम में दृक्ष वक्त जो अब फिर शुरू हुई है भाई बोले चश वाला अबे आप लोग को हम पढ़ के बताए ना। और यहाँ पे और कुछ बताए गए हैं कि अब कॉफर बाख में भी लेके और जा है हबड़ा हुए है हमारे जनता, ये बातचीत है। तो दोस्तों चोरी भैले भैया, हाँ खवापंत रूफर्स भैया एगो माकन फोर्थ रैप्टर एगो ओतो के नाम बा सूरीनाम में, और है फोर्थ रैप्टर ओकर नाम बा। हाँ सिरादन एंड फेफ तक दोईशन एसर देही मारिस ओतो वो चोराई से, और 50,000 कहाँ है हमारा है? हरीश मनोरथ मिनिस्टर फॉर जस्टिस पुलिस बोले देसवा रिश्ता कोई गे चोरी ओरी ना होवे, बोले बहुत कमती बले दे रे भैया, दिन दोपहरे हुआ बालकोन में कोई झलवा झोले और ओकर जे नका बोले हेगा सोना के केती फेती ले के भग जा। अभी यहाँ देखो एगो करिया करिया खरीस फोर्थ रेप्टर रहा और ओकर हाउस कैटिंग 3 अंगूठी और 2 गो कॉन्टैक्ट लो टेलीफोन अंदर फुटते हैं 2 गो मोबाइल और 50,000 एसआर दे लेके और लुटेरा लेके पेल भागल भैया। और बोलेगा बना दिल द रीडन वे रिक्टिंग फुटते इस वे खरीदन एंड इस फॉरस लोग नोक बकेंड और बताएंगे नहीं वो खरों के सिपाही एकर बारे में खोज बीन करे है जोर तोड़ से, अब देखो मिले है कि ना। स्टेलप के बाद भैया ब्लै 24 उर ओपन तेजस आउटब्रेडिंग एंड रेनोवेशन ते सबन आसेट जो है एकेडमी सीकन है बोले हैगा सब रेनोफेयर करेगा, मैं बोले चाहे रेनोफेयर करेगा सीकन है सो वेल 24 उर बोले हैगा बारे एक बार रहेगा। तो हम बोले आप लोग को हम बताए दे कि सूरीनाम की जनता ना घबरियो कुछ रही तो आप लोग ने कर बारे में एक को बुन चिंता करे काम बा आसे तुलो जाई सके चाहे रेनो फांसी हुए है लेकिन आपको वहां पे बहंदली यानी कि मिलेगा। तो ये बात है दोस्तों हमारे यारो प्यारे प्यारे जनता। स्टार न्यूज बतावे भैया बोले कैनेडी वेख में अतवार के भैया जबरदस्त कंट्रोल भइल है और बोले उतरे में एगो प्रोफेसर जाए के भड़ भड़ भड़ भड़ कौतुक ऊपर चढ़ा दे इसे भाई नहीं नुकर रेमोना कमात रहा कि अब सतलक चढ़ा इसे महिया लिखल अब सतलक सिपाही ऊपर चढ़ा दे इसे सिपहिया के स्टॉप टेकन दे इसे प्रोफेसर ना रुकल जाए के सिपाही के पेल दे इसे रानी फर के सांतावे एम परकेट वाह बोले हैगा सिपहिया बोले आखिर ऑफ दैट मोमेंट रहा उसने लेज कंट्रोल करत रहा ब्रोफिस के और बोले वेखर कलेरा स्टॉप करे के और जाए के को ऊपर चढ़ा दे से स्नेल है इस मीट अपराध ने तेज कंट्रोल वेर खबर रात उग बसकादक में से है इस ओवर खबर ना थी पुलिस ब्यूरो। अब देखो ओकर संगे का होवे का ना होवे जैसे पाही तो के रुकाई भैया तो के चाहे रुक जाए के। तो ये बात है हमारे जनता। आओ देखो सब बोले हैं हमारा सिमोंस गैल है इंग्लैंड, बोले गैल पैसा थोड़ो लेनी करे और एक बारे में गया दिन बोले रे बोले खोल कर थोड़ो गैला कर्जा लेवे वहाँ जब प्रेसिडेंट गोड़ निकारे दे सो ते सब के धुक धुके कपते रहे कि कहीं जाए के हो कर रहे तो मैं कर्जा ना लेवे है। तो सिमोंस या बोले खीर लेनी ऑफ कसलो उतर बे बैंक ऑफ अमेरिका। तो इतना आदमी ना विश्वास करे अपन प्रेसिडेंट के जेनिफर सिमोंस मार के बोले ऑन कैन करे है कि वो लंदन गए ला बोले अ लीनिंग इफ ऑफ कसल उड बे बैंक ऑफ अमेरिका फोलकस्टांस हो वारन द खसप्रेक आइसोलेटन बदल ओमस्टास हेज इज अ पार्टनरशिप ऑफ द बोन इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल डेस्क ने खना सूरीनाम ते हाल इन आलोब नार द फॉरवर्ड ओली इनकम्स ते बोले हम कर्जा ना ले ली है और ऐसे ऐसे बात है।
है हमारे प्यारे प्यारे जनता नीव अखरोन के सिपाही लो भैया और बोले है मेल्फिस पिनाज घर घर घूमे है और जनता से वहां बातचीत करेगा कि तुलन कौन ची मांगे है यहाँ पे जनता से मांगे कौन तक करे इंस्पेक्टर लोड और वहां जनता कितना बोले बोले यहाँ पे हंग योंग दुकान लगे बोले बहुत ढेर है वहां दुकानिया लगे खड़ा हुई के दारू पिए भैया दारू पिए है और अंड बन फिस फास भी करे जे हम लोग और जात जाए दुकानिया में और बोले हेगा ओकर बारे में बोले तू लोग कुछ कर और चोरी चपाटी हमारे देश में इस तपलास पे दोस्तों का हम बोली बोली जो नहीं खतीब बतिया हम नहीं खतीब ना बतियाला हम वही बतियाला जैसे तोरिया है ऐसे बतिया है ना हमार नानी ऐसे बतिया है और दूसर बात ना है हमारे जनता तो ये सब बात है सूरीनाम देश के हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के जनता एक गीत हम आप लोग को सुनाएंगे उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को धीरे धीरे खत्म करेंगे और वो गीत क्या है आप खुद ही सुनिए।

0: बस दोस्तों इसी गीत से एक दो समाचार आपको हम सुनाएंगे, उसके बाद में अपना प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। Dit zijn korte nieuwsmensen die jullie zeker moeten weten. Op de kop, ja. Ego Malai, ook een naam. Paviro Rejo, zijn naam. Zijn volk moet zich diep schamen voor de smerige binnenstad. Ja, is bole ganda, he, deswa. Paramari, bo, ganda, he. Hoe ik een parlementariër bole, Paviro Rejo. Bole, janta, kechai, hoe ape, bo, sarm, ke mare, me, doob, mare, ke, Hindustani, me, sab, bole, na. Doob, mare, ke, chahinga. वारे जो बोले भैया बोले सलाम के बेनलाल बोले स्मेर रखेगा। उसके बाद में साथ साथ हम चलते हैं हमारे जनता स्लेमी स्टाप वेर uit A20 के खबलाई फन प्राथ तोत में ग्राफ और मी मुर्गी पोसे हैं एक बदराइफ है और बहुत नेगेटिविटी बतिया रखे रिंग के बारे में ओम द दिसवन नामो चले साथ साथ भैया एगो 71 यार के आदमी के लाइक मिलेगा अफू बाका वेख में भाई डाम पे मिलल है। साथ साथ हमारे जनता फ्रांकराइक के अम्बासाडर जो रहेगा सूरीनाम बोलेगा क्रेंस अकॉर्ड के बारे में कहीं खुशप्रेक करे तुलन जानो है सेड्रिक सिमोंस जो रहा और वो बोले रहा बोले वे वेले खेन हेन खेन फ्रावन आज प्रेसिडेंट में रेकर बारे में जितना एनडीपी के औरत रहा सूरीनाम में और बदुल करेला डीएनए में सब निकल के डाम पे खड़ा हो गए बोले है बोले कैसे तू बोल सके के औरत कहना चाहिए प्रेसिडेंट हुए के तो सिमोंस यानी कि सैमसन बोले सेड्रिक सैमसन बोले है बोले एक क्वार्टर के इंटरव्यू जो हम कली बोले पूरा सुन तो लो खाली एक मिनट हुआ वाला सुने बोले हम ना बोले कि औरत के नाम आखे करे के बोले औरत लोन हमारे के क्लाक करेगा कि औरत प्रेसिडेंट आए ले बाकी तब वो कुछ ना कर पावे है बोले ओकर बारे में बोली बाटी कि औरत प्रेसिडेंट हैगा चाहे ये है मां वो आए के फ्रंट वॉल ले खाई दे नाम में ना देवे बोले ओकर बारे में बोली है और एकर बारे में इंग्रिड बाउटर्स जो ने बाउटर्स का औरत बोले हैगा बोले बोलेगा स्क्रू ले लेकर बोले खाली चिल्ला है सैमसन तो सैमसन इंग्रिड के बोले बाउटर्स के बोले है बोले पहले इंग्रिड बाउटर्स के चाहेगा जितना ना बस्तांद औरत है उसे माफी मांगे के जोन ओकर आदमी जोन है और फुटल भाषा में बोले भातार जोन ओकर है बाउटर्स जोन मर गए है बोले ओकर बोले चाहे इंग्रिड के ना बस्तांद के या औरत लोग के चाहेंगे फॉर ऑस्कुलिंग करे के बोले हम नकर फॉर ऑनस्कुलिंग लाद द फ्रॉ फन बाउटर्स इज फर्स्कोंडिक फॉर ऑनस्कुलिंग अनबीडर फॉर द नाबस्तान जेकर बाउटर्स आदमी लोग के माढ़ाड़ी से दोस्तों जबरदस्त आगे लगल है और ये हैगा वोनिंग ब्रान अन मोन सो की वेख में सूरीनाम फॉरलोर द अफकोल ओपन फिर तक यार 166 हेक्टेयर जंगल दोस्तों। तो यहां तक था हमारा देश और विदेश के समाचार जो आप लोग हमारे जॉनी नंबर वन के जरिए सुनाए हैं। नीदरलैंड के आखिरी भैया एगो आदमी मोन्टर बाइक चलावत रहा और नीदरलैंड में एगो वॉल्फ देखी भैया और वॉल्फ के देही में एको बार ना रहा भाई है सीखते रहा आपल दोरन के बारे में है तो आप लोग को हम बता देते हैं। यहां से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करने का आए हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम है जॉनी नंबर वन। राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल।
1: एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्तान दोस अखिस्तस को करीबन 11 बजे एक आवी खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग निकदी फेफन से इफ्तक से पहले आए हैं उन्हें करीबन 25,000 से नवाजा गया है लेकिन जो निकदी फेफन से इफ्तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आओवीर से। तो भूलना मत अपने हिति प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दोस्तों को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ और उन लोगों के लिए जो नीख तीन फैफन सेफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंद आए हैं।

और खितवा में हो गई लहरिया गुलरी के फूल से आज हम अपना प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। आज को ये घंटा आपको हम घुमाएंगे नचाएंगे सजाएंगे कुछ रीमेक्स बैठे गाने से आप लोग के सेवा आज हम करेंगे। जॉनी है हमारा नाम।

लेलो लेलो रे सजना और नाचो नाचो रे सजनी, नाचो नाचो रे सजनी और नाचो नाचो रे सजना। आज आप लोग को हम एक घंटा करीब कुछ हॉट वॉन बैठ गाना रिमिक्स, कोई फिल्मी रिमिक्स हम सुनाएंगे आपके दोस्तों। और दोस्तों कुछ चटनी सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं, ऐसा लगता है और क्या लगता है आप खुद ही सुनिए।

और चाहे आज मुझे ना पसंद करो, और चाहे कवाड़ी बन करो, और चाहे दरवाजा बन करो। दोस्तों आज कुछ रीमिक्स सॉन्ग्स से आज हम आप लोग को जवा करेंगे। हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर।

72 का हिंदी मशूक, और उसके बाद हम चलते हैं इश गुप्ता नहीं है, नहीं इस छुपता नहीं है, सुजल उमराव का ये सॉन्ग है। इस वक्त ये नौजवान जो है, और ये नौजवान बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों।

और तस्वीर नहीं, तस्वीर नहीं बनती दोस्तों। और ये सब नौजवानों का यौवन सॉन्ग है। और हम चलते हैं उसके बाद जाते हैं, आओ वो है लेडी लेडी एंड लेडी संजना की ओर। आओ मिलकर और झूमे नाचे और प्रोडक्शन बाय ज्वाला चटनी

और हिलाओ और हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ। तब तो बलवा बोली, धीरे धीरे ना, जोर जोर हिलाओ। उसके बाद हम और एक चटनी की ओर जाते ही आओ सुना जाए, ये भी एक हॉट वन है।

चतुर ऐसा चतुर मोरे भौजाई रे, और जब भौजाई चतुर है तो देवर वासी जरूर मान लगेगा। तो हम चलते नीले गगन पर, तो नीले गगन पर क्या होता है?

0: और नीले गगन सी और चले, तो नीले गगन के बाद हम चलते हैं और एक होन अंद्रियाना ठाकुर और दिन
1: शिका
0: शिका नहीं।

0: और तेरी मेरी गल बन गई है हमारी यारो। तो अगला गीत चलते हैं कविता राम की सुन पायलिया। ओहो चलो हम बीच सा बताऊंस
1: झनकार
0: लाओ मेची स्विंग स्विंग।

0: भाई तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर। आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। अनहित सुपर सॉन्ग फन नहीं खती नहीं खनते रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरी महबूबा सॉन्ग दिनेश।

और तेरे चुनरिया दिल ले गई 90 का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं, देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है दिल में कुछ मजलता है।

मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला 99 का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग, यहां से जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम हम चलाते।

क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स वन नेकंत रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी करे देखता रहूं, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नई घंटक का, आप सुनिए।

लड़के जिया तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मूवी का नाम है कोबरा गर्ल, मैथ मुकेश का ये सॉन्ग है।

और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए ही, सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ दोस्तों, एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर।

और दोस्तों आज कुछ चटनी सोका हम चलाएंगे, कुछ गयाना क्या और कुछ सुरीनाम के भी चटनी चलाएंगे, और यानी कि त्रिनिदाद के बाद हम चलते हैं कविता रामकिशुन।

का ये है ये गीत हमारे यारों। उसके बाद में हम जाते हैं और आगे को, और वो है पर्वत पांचू की ओर।

क्या हुआ तेरा वादा? पर्वत पंचू ने इस गीत को गाया है दोस्तों, गाया है, और आज कुछ चटनी हॉट सॉन्ग आपको सुनाएंगे। एंड ना द चटनी को मैं नोक एंचे फन कैनेट शलिक चटनी शोका।

और पारी करो और पारी करो के बाद में हम चलते हैं विदेश शाम की ओर।

गयाना शो का सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं। आप जानते हैं रेडियो फहुन के पांच ऑल सेफ्टी इन हाइस, और जो भी आप चाहो यहां पे आप सुन सकते हैं शेकी बेबी।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फैफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था, वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेक इतनी फैफिन सैफिन तक नौशाद अली के साज पर। लता जी।

लता जी और मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए है। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी, जी हाँ आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिव ट्विन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाए मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो है क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेटिव ट्विन, शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

ये दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तू ऐसे कहा देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप भी हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाज़त हो तो सुना दूँ। ये गीत चला ओवर फ्रॉम हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिल के सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिलिप अनुपमा में से निकाल कर नेकतीन सेस्तक और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: हैं।
1: उठो गाओ।
0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे चलना
1: है। अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार फिल्म अनुपमा में से निकाले हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेंसेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जा आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार?

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत, एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ़ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनकी आँखों की तारीफ़ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते, मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चाहसाज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटी पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउंड स्थानीय रेडियो, जी हाँ फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस इस तरह से।

क्या बात है लता जी, और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म झूला में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर वाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप, मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। गीत रखे हैं तो चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं, प्लेन में जो रखा हुआ है आपका जाना पहचाना गीत इस तरह से।

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर जब आप चुने। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

हर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। फिल्म कलंक में से निकाले हैं और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको और वो ये है।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइयो निगती इंद्रिय शस्त्र में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए www.mitfaun.fm.nl पर आप चुने जो लोग चुनकी मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हरिवीराम रुना लैला आपको सुनाए ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तिनके, फिल्म तपस्या में से निकाले हैं, क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

साथियाँ नहीं जाना कि जीना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुआ चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहे रख प्लेयर में रखे, माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ।

0: कहीं ने दिल को दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हमने आपको सुनाए फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सेफन नेकन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सेफन नेकन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन सेशन सेफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं, बहरहाल निकतीन सेफ ने नेकन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिनियंस।
1: तेरा प्यार,
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में। हमने चला दी, शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फौन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते हैं। बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए फिल्म दर्द में से निकाले हैं नीघतिन इन तख्त का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए हैं फॉन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुने जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं, वह क्या बात है। मुकेश और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है कंचन और मैथी मुकेश ने तीन फाइव से ही भी तो धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया फोर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती हैं।

अपनी प्रेम कहानियां लता जी आपको सुनाएं। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा है। अगला गीत, जी हाँ अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, मैथ मुकेश और शारदा जी।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं। क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

लिए रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

तुमको पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने मैथिली मुकेश की आवाज में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं इस तरह से।

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर। आप चून हैं तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए तो मुझे भी नहीं पता इस गीत के बारे में, और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी, अरे गौरी, तुम हवा में कैसे पहुंच गई? अरे मैं कुछ करता हूँ, ठहरो तुम। मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।
1: अरे

मैथ मुकेश, मैथ मुकेश और साथी मैं आशा जी आपको मिलकर सुनाए हैं यह गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए, कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का लता जी की आवाज में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है, चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हमने चुन कर ये गीत रखे हैं। जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत इस तरह से।

सुनाई थी मुकेश द हार्ट ड्रॉप ऑफ मिलियंस और लता जी साथ दी, और शानदार गीत हमने पेश किए, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है, बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

शारदा जी मिल के आपको ये द्वेत सुनाए जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

सुनाए थे मुकेश जी और लता जी ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जय किशन के साथ पर। कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम। बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ आशा जी और मोहम्मद।

मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निगदी सेफ न सस्त, मैत मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से।

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ते नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो भाई बहनों, हमेशा टेंशन में। तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हैं तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो मित्रों। तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।